नमस्कार। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोतवा, शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026। हमारे प्रसारण आपके लिए 918 किलोहर्ट्ज़ FM के 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DRM मोड पर 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। भोर के 5:56 होने को हैं। अब कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है 918 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रातः के 6 बजने को है। अब पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबरा

0: भट्ट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The newly recruited candidates, selected from across the country, will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio will arrive in Kolkata today on a 4-day visit to India. This will be his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar in National Capital. He will also attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations. On Monday, Mr. Rubio is scheduled to visit Agra and Jaipur before returning to New Delhi to attend the Quad Foreign Ministers meeting on Tuesday, hosted by India. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply, monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help

विघ्न विनाशक, एक दंत, वक्रतुंड, गौरी शंकर के पुत्र भगवान गणेश की वंदना आपने सुनी। रचना तुलसीदास की थी और आवाजें थी अहमद और मोहम्मद हुसैन की। रघुकुल को तारने वाले दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम की स्तुति अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुने।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज पर। इस चराचर जगत में ईश्वर के बाद ईश्वर के तुल्य यदि किसी को दर्जा मिला है, उतना महत्व अगर किसी को दिया गया है, तो वो है माँ। माँ जो सृजन की क्षमता रखती है, जो इस जगत का दर्शन हमें करवाती है, जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमें जीना सिखाती है। आइए माता को नमन करें लता मंगेशकर की गाई इस भक्ति रचना के माध्यम से।

जो सर्वनियंता है, जिसने अपनी जटा में गंगा को धारण किया, जिसने संसार की काली माँ कलुषता कटुता को हरने के लिए विष का पान किया, जो स्वयंभू है, जिसका न आदि है न अनंत है, जो सर्वदा सर्वकाल में रहा है, था और रहेगा, उन देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की आराधना करें इस भक्ति रचना के माध्यम से।

वंदना कार्यक्रम का समापन करें इस आरती के साथ। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर भावों वाली यह कुंज बिहारी की आरती, आइए श्रवण करें।

0: भक्ति संगीत की सुरीली यात्रा वंदना आपने तय की अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक के साथ आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। ये समय है आध्यात्मिक दर्शन के दैनिक कार्यक्रम चिंतन का। आज का चिंतन सुने चैतन्य गुरु जी के विचार। इसमें हम आपको सुनवाते हैं, विषय है भोजन ही दवा है।
1: खाने के बारे में थोड़ा चर्चा करें। हकीकत में हम खाना इसीलिए खाना है जीने के लिए, लेकिन आज हमारा व्यवहार, हमारा जिंदगी, लाइफस्टाइल जो खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए लेकिन उसका हम उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि खाना को दवा में कैसा बदले। पहला, जो एक्सेस कैलोरीज है, जो हमारा जो खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, ये ग्लूकोज में बदलते हैं, और विटामिन्स मिनरल्स के साथ में ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन से टकराता है तब एनर्जी में बदलता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का खाना, वसा का खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर में जो कंजम्पशन है कैलोरीज के, उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो मोटापा में बदलता है।

0: तो नंबर वन, कौन सा चीज़ में कितना कैलोरीज है और उतना ही जितना एक दिन में मेरा कैलोरीज का कंजम्पशन कितना है वो देख करके हमको करना चाहिए। अब बात रहा वाइटमिन्स की, मिनरल्स की, एंजाइम्स की। ये वाइटमिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स जब हम सब्जी को पकाते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। मिनरल्स भरपूर हमको सब्जियों से मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर का छिलका उतार देते हैं और जो अंदर का चीज़ों को हम तलते हैं यानी तो पानी में डाल के, कढ़ाई में डाल के उबालते हैं। जब ऐसा उबालते हैं तो वाइटमिन्स, मिनरल्स सब ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कच्चा सब्जियां और कुछ सब्जियां जैसा यहाँ पर मशहूर है जो वंगा बोलते हैं, ऐसा चीज़ें छिलके समेत खाना बहुत ही आवश्यक है और इनके साथ में अंकुरित खाएं सुबह नाश्ते में। इस तरह कुछ वेजिटेबल सलाद और फ्रूट सलाद, सुबह कोई भी पका हुआ खाना ना खाते हुए 4-5 बादाम रात को भिगा दें और 2 अंजीर रात को भिगा दें। इस तरह एक परिपूर्ण न्यूट्रिशन फूड ब्रेकफास्ट ये हो सकता है। ऐसे ही दोपहर को हम एक या दो रोटी खाएं और बाकी जगह पर इस तरह फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाड्स खाएं, और शाम को चाय के जगह पर अगर हम सुबह मुनक्का भिगा करके और उनको खाएंगे तो खास करके औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। और ऐसे ही रात को भी अगर हम पका हुआ खाना ना लेते हुए अगर हम कच्चा खाना, अगर जिसको हम अमृतार कहते हैं, अगर इस तरह अगर हम खाएंगे तो हमारा खास करके रात को पत्तेदार सब्जियां हैं जैसा पालक है, बथुआ है, मेथी है, ऐसा चीज़ों को खाएंगे क्योंकि उसके अंदर में भरपूर फाइबर कंटेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन जैसा दूर हो जाता है और ख़ास करके उनके अंदर में जो हरा भरा चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस तरह सुबह, दोपहर, शाम ऐसा 3-4 बार अगर हम बिना पका हुआ एक अच्छा सब्जियां और फल, कुछ फल छिलके समेत, कुछ फल छिलके उतार कर, जैसा सेब जैसा, अमरूद जैसा चीज़ों को हम छिलके समेत खाने, पपीता जैसा, केला जैसा उनको उतार कर। केला को हम सुबह और दोपहर को खाना चाहिए, रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह अगर हम अपना खाने के प्रति ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शरीर के अंदर में तत्वों को बदलता है, तासीर बदलता है, बहुत कुछ हमारा शरीर के अंदर में फायदा हो सकता है।
1: चैतन्य गुरुजी से आपने विचार सुने भोजन ही दवा है विषय पर। कार्यक्रम सा चिंतन, हम आकाशवाणी के कॉर्न सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले बाकी कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों पश्चात प्रातः 6:55 पर संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर खेती रवास्ते कार्यक्रम होगा। फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था विषय पर जानकारी दी जाएगी। मानस गान सुनिएगा 7:20 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात आप सुनेंगे प्रातः 7:30 बजे। 8 बजे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर और सुबह 8:30 बजे उर्दू में खबरनामा दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत में कुछ भजन हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 8:45 पर। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी, यह कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मधुर फिल्मी गीत आप सुनेंगे प्रातः 9:35 से, जो जारी रहेंगे दिन में 12:30 बजे तक लगातार। इस दौरान 12 बजे 5 मिनट के लिए स्थानीय सूचनाएं और कार्यक्रम विवरण हम आपको बताएंगे। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। खेत खलिहान में जानकारी दी जाएगी फसल उत्पादन में मौसम का प्रभाव। कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:50 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार दिन में 1 बजे आप सुन पाएंगे। महिला जगत कार्यक्रम के साथ मंजू शर्मा आपको जानकारी देंगी क्रोध पर नियंत्रण, बच्चों के लिए समर कैंप कितना फायदेमंद, तेज़ धूप व लूप से बालों का रखे ख्याल और घर में डाइट फूड बाहर जंक फूड, ऐसे कुछ और समसामयिक विषय इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। महिलाओं के मनोरंजन हेतु कुछ गाने भी सुनवाए जाएंगे। मिड डे न्यूज़ दिन में 2 बजे, दोपहर समाचार 2:15 पर दिल्ली से रिले किए जाएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 2:30 पर। हमारी उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे।

0: दोपहर बाद 3 बजे से। युववाणी कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही बुजुर्गों का सम्मान, आधुनिकता के मायने, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषय इस कार्यक्रम में युवाओं को पहुंचाने के लिए शामिल किए जाएंगे। युवा श्रोता कुछ फिल्मी गाने भी सुन पाएंगे। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सिराय की जुबान पर आधारित झोंक माही दी। शाम 6:30 हिंदी में और 6:45 पर राजस्थान में प्रादेशिक समाचार जयपुर से लिखे जाएंगे। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे। आज का आकर्षण होगा हरी खाद के रूप में ढेंचा की खेती, ग्वार के लिए खेत की तैयारी कैसे करें और लू से पशुधन को कैसे बचाएं विषयों पर जानकारी। साथ ही उपलब्ध होने पर बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी इस कार्यक्रम में हम आपको दिया करते हैं। कुछ लोकगीत लोक भजन इस प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। संध्या 7:45 पर फिल्मों से कुछ भक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 स्पोर्ट्स के समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज़ 8:09 रात्रि 9 बजे ये सभी कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:15 सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ गजलें। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका का कार्यक्रम विज्ञान भारती रात्रि 9:30 दिल्ली से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन दिल्ली से रिले किए जाएंगे। इस केंद्र के कार्यक्रम संपन्न होते हैं रात्रि 11:10 पर। श्रोतो, आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी को। यह है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ 918 kHz पर। आपके लिए हमारे प्रसारण FM के 100.1 MHz, DR मोड पर 909 kHz पर और मीडियम वेव पर 326.79 MHz पर उपलब्ध हैं। साथ ही आप हमें ट्यून कर सकते हैं आपके अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, जी हाँ, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। 6:55 होने को हैं, कृपया समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतरराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत्प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे।

0: लेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit the Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been selected for the prestigious 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion.

0: as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. CBSE said the decision was taken after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. The Trump administration has announced a major change to the U.S. green card process, stating that foreign nationals seeking permanent residency will now be required to return to their home countries to apply. The move, outlined in a policy memo by the U.S. Citizenship and Immigration Services, limits approvals from within the United States to only extraordinary circumstances. Under the new policy, applicants for permanent residency, a key step towards U.S. citizenship, will largely need to complete consular processing abroad. The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to the Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. In a statement, the ITBP said the 14-member team, comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff, summited the world's highest peak on the 21st of this month through the South Col route from the Nepal side. The expedition was flagged off from ITBP headquarters on 19th April. As part of its Clean Himalaya Safe Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. And that is the end of this news bulletin.
1: कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज पर प्रगतिशील किसान भाई सुने कार्यक्रम खेती ना वास्ते। जानकारी का विषय है फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था। किसान भाइयों राम राम। भाई लोग अपने भांत भांत की फसल लगे इंगे सागे सागे अपने क्षेत्र में भाई लोग जो बाग बगीचा भी खूब लगावा है, पर अब इन टाइम में बाग बगीचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर जब भी अपने ठंड पड़ती हो तो पाले शू हर एक बूंटे ने बचाना जरूरी है। तो सारों अच्छो तरीको ये कि जब भी आप पौधे ने आप टाइम से सिंचाई करता रहा ताकि पाड़ो भी ने कम से कम असर कर सके। जटे भी हो सहनशील किस्मों को आपने चुनाव करना चाहिए, जहाँ नींबू प्रजातियों में किन्नू है, माल्टा है, बारामासी और कागजी नींबू आंगो चयन करना चाहिए। जगह छोटा बूंटा है वांगे चारों तरफ आपने घास है, फूस है, खींप है, केर है, सरकंडो है, तो आंगो चार अच्छी तरह ढक के रखना चाहिए। बागे किनारा में आसपा घास फूस है वो ढेरी कर देनी चाहिए। जगह दिन आपने संभावना हो कभी अब आज पाड़ो पड़सी तो बीन टाइम रात ने आधी रात ने बने दुखा देनी चाहिए, तो धुएं छू क्या कि वातावरण गर्म हो जाए, बूंटा को जो बचाव हो जाए। ज्यादा ठंड या पाड़ो पड़ने वाले दिन जो आपने सिंचाई कर देनी चाहिए। पर अब अपने क्षेत्र में भाई लोग जो किन्नू का बाग बगीचा लगा रखा है, तो अब जगह बाग बगीचा पूरा पाकेड़ है, तो बामे कई बातों के अपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सारों वाई के जगह पूर्ण रूप पाक के बाग तो बने फसल तुड़ाई करते टाइम बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे क्योंकि अपने तुड़ाई एक तो शाम के टाइम करनी चाहिए, सुबह के टाइम धूप नहीं हो या कम तापमान हो, परंतु ध्यान देने वाली बात आई है कि दिन के टाइम फल पर ओस या गिलो नहीं हो। फल की कटाई डाली छू कैंची या क्लिपर के द्वारा नजदीक छू डंडी ने काट के करनी चाहिए, जब डंडी लंबी नहीं रहनी चाहिए। फलांग सागा आप गाला तो भी मैं क्या एक दूसरा फल नुकसान नहीं दो या निबाने सुराख नहीं हो जाए, छेद नहीं हो जाए, तो ये भी आपने सावधानी जकी रखनी चाहिए। पर इनके साथ साथ और भी जगह काट छांट बांगो भी ध्यान रखना चाहिए। जगह अंगूर है, अनार है, फाल्स है, आड़ू है, आम भी आपने काट छांट जकी करनी चाहिए। सूखे या रोगस्त जकी शाखाओं में काट देनी चाहिए। काट छांट के तुरंत बाद 1 सेंटीमीटर की मोटी टहनियां ने ब्रोडेक्स पेंट यानी कॉपर सल्फेट नीलो थोथो 1 किलोग्राम, भुजड़ो चुनो 2 किलोग्राम, श्रेस 400 ग्राम और पानी 40 लीटर इनमें घोल बनाकर इनको लेप करके लगा देना चाहिए। खाद और उर्वरक की बात करें तो जिया जिया बूंटे की उम्र हो भी हिसाब अपने खाद और उर्वरक का जो देना चाहिए। पर सिंचाई की बात करें तो कांट छांट के और खाद देने के तुरंत बाद है जबकि अपने सिंचाई कर देनी चाहिए। जबकि भाई लोग बेर का बगीचा लगा रखा है और बेर तो एक ईशो बगीचा जो

अपने मरु प्रदेश में कम पानी वालो बगीचो है तो इनमें सारा मोटी सावधानी आई रखनी के कम पानी में अलग है। पर आप आंशु लाभ आप ज्यादा जदी ले सका के जागे टेम सरवा पर देखभाल करा तो बेर गए बगीचा में अब जो को फलमक्खी को प्रकोप हो रहा है। फलमक्खी बेर को सारों ज्यादा हानिकारक कीट है। जब फल छोटा और हरिया हुआ है तो वो कीट ने आक्रमण शुरू कर दिया। शुरू में फल एक लट गए रूप में पाई जाए, छोटा फलिंग प्रभाव के कारण काणा हो जाए, लेकिन बड़े फलांगो आकार में कोई विशेष अंतर कौन पड़े और लटा अंदर में पूरा फल खा गए फिर बाहर निकले जगह कारण कहेंगी गुणवत्ता जकी बेरगी खत्म हो जाए। पर रोकथाम खातर अपने कई उपाय

0: काणा हो जाए, लेकिन बड़े फलों आकार में कोई विशेष अंतर कौन पड़े। और लटा अंदर में पूरा फल खा गए फिर बाहर निकले, जगह कारण कहेंगी गुणवत्ता जकी बेरगी खत्म हो जाए, पर इनकी रोकथाम खातर आपने कई उपाय जका करना चाहिए। तो जब भी बेर की फसल में फल मक्खी को प्रकोप हो तो मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 मिलीलीटर या डाईमिथोएट 30 CC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। ज्यादा हुए तो दूसरा छिड़काव है जो को 15-20 दिन के अंतरा पर आपने दोहरा देना चाहिए। चेफर बिटल की बात करें, वो भी एक हानिकारक कीट है, जब वातावरण में नमी हुए तो बिन टाइम वो आक्रमण आपको शुरू करे। इनकी रोकथाम खातर भी आपने मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 मिलीलीटर या कार्बोरिल 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के पेड़ों के ऊपर आपने छिड़काव जो को कर देना चाहिए। छाल भक्षक कीट की बात करें तो वो भी एक कीट है जो को बेर की पेड़ की छाल ने खाऊ तो रहे, धीरे धीरे बिंग माँ भी छिपेड़ो रहे, पर जब भी वो डाली में अंदर तय जाए तो गहरी सुरंग बना ले, जबकि शू कदे कदे डाली शाखा कमजोर हो जाए गिर जाए, तो इंग नियंत्रण खातर जकी सूखी डाली बिन काट के जला देनी चाहिए। मेलाथियान 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी ने घोल बना के शाखाओं और डालियों में छिड़क देना चाहिए। सुरंग ने अच्छी तरह साफ करके पिचकारी की सहायता से बिंग माँ केरोसिन 3-5 मिलीलीटर प्रति सुरंग में डालकर अच्छी तरह रूई के फोम में लगा के दबा देना चाहिए। ऊपर गिली मिट्टी जकी लगा देनी चाहिए। तो ई शाह बापा आपने जका भी बेर का बगीचा है या जका भी बाग बगीचा आपने तुबांग आप देखभाल है जबकि टेम सारू कर सका, तो इन तरह आप अपने बाग बगीचा में टेमो सारू काम धाम कर गए और बांसू आप अच्छो लाभ है जो को ले सका। तो किसान भाइयों अब हूँ खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था विषय पर जानकारी आपने सुनी खेती नमस्ते कार्यक्रम में। आइए एक लोक भजन सुने मोइनुद्दीन

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था, और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पणखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

महेंद्र कपूर, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को आपने सुना। मानस गान में इन दिनों आप सुन रहे हैं अरण्य कांड, आज था भाग 252। इस कार्यक्रम के संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव 326.7 मीटर्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम लेकर मैं कमल पारिक आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। श्रोतवा, सबसे पहले बात करें, बात शुरू करते हैं रेडियो से। आकाशवाणी अपने प्रसारणों के माध्यम से आप तक सूचनाएं, समाचार और मनोरंजन तीनों चीज़ें पहुंचाता है। आकाशवाणी की प्राथमिकता यही रहती है कि आप तक सटीक समाचार पहुँचें, सही समय पर सही सूचनाएं पहुँचें और स्वस्थ मनोरंजन हो। क्योंकि दिग्भ्रमित करना, अफवाहें फैलाना, इन सब से सोशल मीडिया पर लोग बहुत प्रभावित होते हैं, इन चीज़ों का दुष्प्रभाव भी पड़ता है, व्यक्ति की मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। वहीं आकाशवाणी के कार्यक्रम आपको सुकून देते हैं। मानसिक शांति से याद आया, यदि आपने गौर किया हो तो इन दिनों यूं लगता है कि सामान्य जन, चूंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों के रहने सहने का तरीका बदला है, लोग हाइजीन पसंद करने लगे हैं, जिस तरह से खासतौर से कोरोना काल के बाद में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत हुए हैं, उनमें चेतना आई है, साफ सफाई पसंद करने लगे हैं, खाने पीने की वस्तुएं ढककर रखना, हाथों को साफ करके कोई भी चीज़ खाना पीना, नियमित रूप से नहाना, वस्त्रों को स्वच्छ करके पहनना, यह सब उनके रूटीन में शामिल हो गया है। हालांकि जो लोग अभी भी शिक्षा से थोड़ा वंचित हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे लोगों में अभी भी कुछ जिन्हें विकृतियां कह सकते हैं, कुरीतियां कह सकते हैं, उनके चलते यह समझ विकसित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ा है। हम बात कर रहे थे मानसिक शांति की। मानसिक शांति कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाज़ार से ला कर के हम अपने घर में रखें और उसको किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर दें। यह व्यक्ति को अपने आप में खुद विकसित करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। दूसरी बात, नियमित रूप से कुछ कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम आदि करें। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जो कम समय में व्यक्ति को बहुत लाभ देती है। बिना पैसे के आप स्वस्थ हो सकते हैं। जो सांस हम अपने शरीर में लेते हैं, जो बाहर छोड़ते हैं, उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। किस तरह से सांस को इनहेल करें, अंदर खींचें, कितनी देर उसे रोक कर रखें और फिर उसे किस तरीके से बाहर छोड़ें, यह जो विज्ञान है इसे हम प्राण

प्राणायाम के नाम से जानते हैं। फिर कुछ सामान्य आसन हैं, कुछ सामान्य विधियां हैं जिन्हें व्यक्ति अपने घर के छोटे से हिस्से में, एक कमरे में, एक आसन पर बैठ करके आराम से कर सकता है। कुछ एक इस तरह की कसरतें और व्यायाम हैं जो व्यक्ति अपने घर में ही कर सकता है। जो लोग किसी वजह से यह सब नहीं कर पा रहे, उनके लिए सुलभ है प्रातःकालीन भ्रमण। सुबह सुबह की सैर व्यक्ति को शुद्ध ताज़ा हवा के अंदर घूमने से जो लाभ देती है, वो उसे दूसरी महंगी दवाइयों से भी नहीं मिल पाता। सुबह सुबह आप किसी नज़दीकी उपवन में जाएं, प्राणवायु अपने अंदर खींचें, उससे आपके फेफड़ों को बल मिलेगा। हो सके तो थोड़ा तेज़ रफ्तार से चलें। भ्रमण का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि जितना हो सके आप हल्की दौड़ लगाएं। अगर दौड़ नहीं लगा पाते तो आप अपनी रफ्तार जो है चलने की वो थोड़ी तीव्र रखें। शरीर में से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। पसीने के माध्यम से शरीर में से बहुत सी विकृतियां बाहर निकलती हैं और हम एकदम ताज़ा तरीन होकर के लौटते हैं। इससे तन स्वस्थ होता ही है, मन को भी बहुत शांति मिलती है। सुबह सुबह का वातावरण इतना सुंदर, इतना सुहावना होता है। पक्षियों का कलरव इतना मधुर लगता है। और ऐसे में यदि आप हल्की और धीमी आवाज में बांसुरी का मधुर संगीत लगा करके बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। सुबह सुबह के समय में सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं, और यकीन जाने कि जो प्रार्थनाएं की जाती हैं उनका असर बहुत दूर तक जाता है। विज्ञान ने इसे टेलीपैथी का नाम दिया। जो भावनाएं हम सच्चे मन से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं, वो जहाँ तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँचती है। और ऐसा बहुत से लोगों ने महसूस भी किया है। कुछ इसी तरह की फीलिंग लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी साहब ने एक बार एक गीत लिखा था। किशोर कुमार की आवाज़ में आई उस नगमे को सुने। फिल्म का नाम है मजबूर।

आदमी जो लेता है और आदमी जो देता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। हम जिस संस्कृति में पले बड़े हैं वहां पर तो वो इस जिंदगी क्या, वो तो अगली जिंदगी तक भी पीछा करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएं, कभी किसी की आत्मा को परेशान न करें। इसीलिए हमारे सभी ग्रंथों में, हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में इस बात पर जोर दिया गया कि अपने कर्तव्य कर्म को भली प्रकार करें। भले ही आप अपने अधिकार कुछ कम इस्तेमाल करें, लेकिन अपने कर्तव्यों

को पालन करना ना भूलें। आपका कर्तव्य आपके परिवार के लिए है, आपके समाज के लिए है, सबसे अधिक आपका कर्तव्य आपके देश के लिए है, इस मातृभूमि के लिए है, इस पवित्र भारत देश के लिए, जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ की मिट्टी में हम पले बढ़े, जिसने हमें शिक्षा दी, रोजगार दिया, अपना पेट भरने के लिए इस भूमि ने हमें अन्न दिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देश के प्रति वफादार नहीं है, जो गद्दारी करता है, जो देशद्रोही है, वो महापातक नरक में जाता है, उसकी गति नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार दें कि उनमें देश प्रेम का जज्बा पैदा हो। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपने ट्यून किया है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज़ पर, और मैं कमल पारिक, आपका अपना रेडियो दोस्त, आज आपके साथ हूँ। यह कार्यक्रम है सुप्रभात। दोस्तों, अब हम आपको कार्यक्रम में एक दो गाना सुनवा देते हैं हेमलता और यशोदास की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। गाने की जो थीम है, जो भाव है, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे बेहद पसंद है और मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए मसला होता है सुरक्षा का, यह सुरक्षा हो सकती है उसके परिवार की, उसके निजी जीवन की, उसके भावी जीवन की। सुरक्षा उसको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करे, ऐसी सुरक्षा जो उसे स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी सुरक्षा जो उसे शिक्षा प्रदान करे, एक ऐसी सुरक्षा जो उसे सामाजिक तौर पर समाज में प्रतिष्ठित करे, बस इतनी सी ख्वाहिश। बाकी तो सबको पता है कि ये दुनिया फानी है, एक दिन सबको खाली हाथ चले जाना है। ऐसे में यदि हम दूसरों की मदद करें तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, और इस मन के सुकून के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। एक बार एक आतंकवादी से किसी पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आप जो ये दहशतगर्दी करते हैं, इससे आपको क्या हासिल होता है, क्यों करते हैं आप? उस आतंकवादी ने बड़ा सोच के उत्तर दिया, और संभवतः वह सबसे सही उत्तर हो सकता है। उसने कहा कि अपने दिल के सुकून के लिए मैं ऐसा करता हूं। साहब, सुकून तो सुकून है, किसी को किसी की सहायता करके, किसी का घर बसा करके सुकून मिलता है। वहीं ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्हें हम सनकी कह सकते हैं, मानसिक विकृत कह सकते हैं, समाज के लिए उपद्रवी जिन्हें कहा जाता है। वे लोगों को, आम आवाम को परेशान करके खुश होते हैं। अगर वे लोग कुछ पलों के लिए यह सोच लें कि उनका कृत्य किसके हित में है, तो शायद वे यह काम ना करें। लेकिन इस तरह से ब्रेन वॉश उन लोगों का, उनको प्रशिक्षण देने वालों द्वारा किया जाता है कि उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे यही करना है। इसीलिए कहा जाता है कि सब लोग पढ़ें लिखें, देश के प्रति प्रेम सब लोगों में होना चाहिए। और इस काम में एक अहम भूमिका जो निभा सकता है वो है गीत और संगीत।

अन्यतः गीत संगीत के शौकीन लोग बड़े मीठे होते हैं, बड़ी कोमल उनकी भावनाएं होती हैं, बड़े सुंदर उनके विचार होते हैं। तभी तो गीतकारों ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं अपने शब्दों के माध्यम से गीतों के रूप में हम तक इस समाज को भेंट स्वरूप दी है। शायद आपको यह भी मालूम होगा अच्छी तरह से कि संगीत ईश्वर को भी बेहद प्रिय है। हमारे यहाँ तो संगीत की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सुर देती है सरस्वती, और जब सरस्वती द्वारा प्रदत्त सुर, वो वाणी, वो आवाज, वो विचार आपस में मिलते हैं और फिर उससे जो खुशी प्राप्त होती है उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई सानी नहीं। आप महसूस करके देखें, समान विचारधारा के लोग समान विषयों पर जब चर्चा करते हैं तो उन्हें आत्मसुख की अनुभूति होती है, और यही आत्मसंतोष सबसे बड़ी दौलत है। बाकी चीज़ें तो आप बाजार से भी कमा सकते हैं, लेकिन आत्मसंतोष वह सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हमदम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसफर के साथ बात करके ही प्राप्त हो सकता है। तभी तो इस गीत के माध्यम से रविंद्र जैन साहब ने जो बात कही वो नगमा हम आपको सुनवा देते हैं चित्तचोर फिल्म से। आवाज़ें जैसा कि हमने आपको बताया था हेमलता और यशोदास की, आइए सुने।

0: सुप्रभात कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक को इजाजत दें। कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज पर 8 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

0: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसी सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी

0: स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें

0: से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधान

0: of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम करेंगे. आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं. वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है. भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकरारशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरारनामे तकसीम करेंगे. जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे. हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है. तफसील हमारे नामा निगार से.
3: रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है. अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरारनामे जारी किए जा चुके हैं. 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा. मुल्क भर से तकरारी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दिगर महकमे और वजारतें शामिल हैं. नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर.
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाजत दी है. ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है. यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की. आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60% का इजाफा हुआ है. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने चार रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं. ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा. जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है. भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया. अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी

0: और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इआदा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को, जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कोंगो में अक़वामे मुत्तहदा के इस्तेहकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल

0: राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरनामे तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुने ये भक्ति रचना मुख्य स्वर जगजीत सिंह का।

0: सुगम संगीत में अभी आपने जगजीत सिंह और साथियों को सुना। 9 बजते हैं, प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 47 स्थानों पर लगने वाले इन मेलों के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर में और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव कल पाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद राजस्थान के लिए 46 नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है।
1: बहुत सारी नई गाड़ियां चालू हो पाएगी, साथ ही साथ 85 स्टेशनों का नव निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जिसमें करीब 15 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम चल रहा है और देश भर में 1300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और कई नई सुविधाएं देश को मिलेंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल सेवाओं और निशुल्क जांच शिविरों के जरिए गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। श्री बिरला कल कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 बेड के इस आधुनिक अस्पताल के बनने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा

0: सुविधा सुलभ हो सकेगी।
1: बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ जिला अस्पताल हो। 62 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है। ये सारा इलाका जहाँ मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ के लोगों को कोटा या झालावाड़ इलाज के लिए जाना पड़ता था, आने वाले समय में सभी का इलाज यहाँ पर होगा। तो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, दो दो महाविद्यालय हो, टेक्निकल महाविद्यालय हो, तमाम चीजें जो एक आवश्यकताएं थी जो रामगंज मंडी में बरसों तक अभाव थे उनको पूरा करने का काम किया।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। 15 मई को 3 रुपए, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाने के बाद अब ईंधन की कीमतें फिर बढ़ने से हाल के दिनों में अब तक लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच ये निर्णय लिया गया। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार नाम की ये महिला परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी। इसे एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकरण में सीबीआई ने देश भर में जयपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक के अत्यधिक और तकनीकी व्यवधान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के वास्ते 2 दिन का समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
2: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण।
0: बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अराजपत्रित अधिकारियों को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दी गई। कांग्रेस पार्टी का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आज से पुष्कर में शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 4 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ

0: चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। वहीं 25 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है। हालांकि भीषण गर्मी और तपिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने और हीटवेव की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में आज तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस बीच बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अर्पणा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी नमक डाल के पिए। या
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: होता है उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा, जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
4: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया। व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
3: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
4: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद। तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं, तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
3: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
4: डर।
3: हाँ, मन में डर जो होता है,
4: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
3: क्या बात है।
4: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और

0: आज करते हैं तो अगर कहीं बजाने के, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आ करके भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप
1: क्या
0: से।
1: बात, बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ शुरुआत तो मेरा कर्नाटिक म्यूजिक से था। 9 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज

0: हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी
0: तो
1: जी
0: पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में,
1: जी
0: और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था।
1: जी
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद
1: जी
0: बराबर
1: जी
0: बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता ही नहीं, पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में अभी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए।
1: जी
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी,
1: हाँ
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए
1: जी जी
0: तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे,
1: वाह वाह।
0: तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से,
1: जी।
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है,
1: जी
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो
1: जी।
0: है उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था, फिर भी
1: हाँ
0: अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी
0: कि कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक

0: आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सवाल ऐसा है
1: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी
0: जी।
1: हम रहे पांच बच्चे
0: अच्छा
1: मेरे पेरेंट्स के, तो
0: हाँ
1: सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
0: हाँ
1: चाहे लड़की हो या लड़का,
0: हाँ
1: पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है.
0: वाह
1: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक.
0: हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
1: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है, उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था.
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं? जी
1: वायलिन
0: जी
1: में,
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट में,
0: इंस्ट्रूमेंट में।
1: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
0: हाँ क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी
0: सेमी क्लास
1: क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से लोगों का,
0: जी
1: बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे.
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी। आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
0: जी,
1: खूब उन्होंने प्रोत्साहन
0: और
1: दिया.
0: जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
1: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
0: हाँ जी हाँ जी
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की,
0: जी
1: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से
0: वाह,
1: समझ में आता
0: बिल्कुल
1: था
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: लोगों को.
0: जी।
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन नहीं, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो.
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके साथ
1: मेरे
0: जुगल?
1: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
0: जी
1: दोनों
0: जी
1: में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को, दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि
0: जी
1: सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है.
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है,
0: जी।
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की. जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम

0: सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं
1: वाह, आपने
0: बनाया।
1: पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल,
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी,
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए। तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे।
1: जी
0: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो वो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, हम बच्चों का प्रोग्राम। तो आया छड़ी ले करके वहां, वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए,
1: जी
0: तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके बाद वो आके बैठे। उसके जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग द्वेष बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का। तो
1: जी
0: लोग कहा हाँ कर। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया
1: वाह,
0: है। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता
0: हाँ,
1: है आपको?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी,
1: जी
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें, ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो
1: जी
0: हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ।
1: क्या
0: उसमें
1: बात,
0: मुझे रुचि नहीं है और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत

0: थैंक यू सो मच। मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:35 हुए हैं। आइए फिल्म संगीत सुने। पहले सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, गीत रचना नीरज की, संगीत सचिन देव बर्मन का, और फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

0: मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर को सुने। अनुराग फिल्म के लिए गीत लिखा आनंद बख्शी ने, धुन सचिन देवबर्मन की है।
1: अच्छा,

0: कर डालू हाल मोहे संभाल।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं मजरूह का गीत, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम कारवां।

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको

ये मीठी सी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में नगमा लिखा SS बिहारी ने। फिल्म का नाम काश्मीर की कली।

श्रोताओं, वो कौन थी? इस फिल्म के लिए सुनैना मंगेशकर और महेंद्र कपूर को राजा मेहदी अली खान के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने।

सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, ये गाना सुने। श्यामल मित्रा का संगीत है, हिंदी पर ने नगमा लिखा, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम।

श्रोतो, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। मैं हूँ कमल पारिक, आपका अपना रेडियो दोस्त आज आपके साथ। आनंद बख्शी का लिखा गाना हम आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। जीवन मृत्यु फिल्म के लिए इसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनें।

ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये गीता आपने सुना महल फिल्म से। अब सुनिए SH बिहारी का लिखा नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। जाने अनजाने फिल्म के लिए इसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने।

अब हम आपको शैलेंद्र का लिखा गाना सुनवा देते हैं। दो गाने को आवाजें दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है, पद्मिनी पिक्चर्स के बैनर तले ये गाना है, दिल तेरा दीवाना फिल्म से।

0: कर देता।
1: मिलती आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू, अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। ये गीत आपने सुना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना। आइए इसी फिल्म के लिए कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शैलेंद्र ने ये गीत लिखा, धुन शंकर जयकिशन की।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानकार बनिए, सतर्क बनिए। ये बात सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है, अपने निजी जीवन में भी जानकार बनिए, सतर्क बनिए। ब्रह्मचारी फिल्म का ये दो गाना सुन रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में शंकर जयकिशन की तर्ज है गाना, हसरत जयपुरी ने लिखा।

0: दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: रूना लैला और भूपेंद्र को सुने, गुलजार का लिखा गाना, मीठी सी धुन, जयदेव ने बनाई फिल्म का नाम घरौंदा।

आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज़ पर। ध्यान रहे, हमारे प्रसारणों का मतलब है आपके मनोरंजन की फुल गारंटी। आइए इसी गारंटी को बरकरार रखें। एमजी हसमत का लिखा गीत सुने, किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजें हैं, रविंद्र जैन का संगीत है, फिल्म का नाम है तपस्या।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुन लें। फिल्म का नाम है मन मंदिर, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत लक्ष्मी प्यारे का।

एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म के लिए सुने मुकेश और आशा भोसले को, गीत इंदिवर का, संगीत ओपी नैयर का।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। आइए प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत। सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से मित्र, आज फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। गीत आपने

0: पहचान लिया है।
1: प्रोफेसर, फिल्म का गीत जो हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं, लता की आवाज है, शम्मी कपूर पर फिल्माया गया, और शायद आप में से कईयों को याद ना हो, इस गीत में शम्मी के साथ नजर आती हैं अभिनेत्री कल्पना। लेकिन बातचीत का विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आखिर एक जो प्यारा सा मधुर सा नगमा है वो किस राग पर आधारित है। गीत हमने इसको कई बार सुना, पसंद किया, प्यारा सा नगमा है, और ऐसा सदाबहार पुराना नगमा जिसे बार बार सुनने को जी चाहता है। लेकिन ये जो राग पर आधारित गीत है, ये राग शिवरंजनी पर बेस है। शिवरंजनी भारतीय संगीत का एक बहुत ही मधुर, भावपूर्ण और लोकप्रिय राग है। मुख्य रूप से ये राग अपनी कोमल और रोमांटिक प्रकृति के लिए जाना जाता है। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ बॉलीवुड के कई फिल्मी गानों में इस राग का बड़ी खूबी के साथ, सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। इसमें आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वर लगते हैं। मध्यम में मैं और निषाद में नी का प्रयोग इस राग में नहीं किया जाता। इसमें कोमल गंधार गय का प्रयोग होता है और बाकी जो सारे स्वर हैं वो शुद्ध होते हैं। कहते हैं कि ये राग काफी हद तक भूप या भूपाली राग से मिलता जुलता राग है, लेकिन भूप में शुद्ध गंधार लगता है जबकि शिवरंजनी में कोमल गंधार का प्रयोग किया जाता है। इस राग को विशेष तौर पर रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है और इसकी जो प्रकृति है वो श्रृंगार रस और गंभीर भावनाओं को दर्शाने वाली है। आज के इस फिल्म संगीत प्रोग्राम में कुछ ऐसे नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो राग शिवरंजनी पर आधारित है। पहला गीत सुने प्रोफेसर फिल्म से। इस गीत को हसरत ने लिखा, संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया, आवाज जैसे कि आप जानते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।

प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीत को गाया किशोर कुमार ने, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत तैयार किया राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। मित्रों, ये फिल्म आई थी 1972 में और फिल्म में इस गीत पर अभिनय किया राजेश खन्ना के साथ तनुजा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सूरज से, जिसे गाया मोहम्मद रफी ने, बोल हसरत जयपुरी के संगीत शंकर जयकिशन का। गीत फिल्माया गया राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर। ये फिल्म आई थी सन 1966 में।

मित्र, राग शिव रंजनी पर आधारित कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। अपने जमाने की चर्चित फिल्म जो 1970 में रिलीज हुई थी, एक मल्टी स्टारर फिल्म जो राज कपूर के जीवन की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, और उस फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। गीत मुकेश की आवाज में, संगीत जैसा कि आप जानते हैं शंकर जयकिशन का, और इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने।

प्रोग्राम का अगला नगमा 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी से, जो शम्मी कपूर और राजश्री की फिल्म थी। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को स्वर दिया मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने।

इस गर्मी के मौसम में रिमझिम फुहारों के इंतजार में कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म अनजाना से, जो फिल्म आई थी 1969 में और फिल्म में अभिनय किया था जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार और बबीता ने। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी है। शिव रंजनी राग पर आधारित इस गीत का संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और प्यारे से बोल लिखे आनंद बख्शी ने।

1976 में आई महबूबा फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, जो फिल्माया गया राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर। इस गीत को गाया किशोर कुमार ने, बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की राहुल देव बर्मन ने।

राग शिव रंजनी पर आधारित कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संगम से, जो फिल्म आई थी 1964 में, गीत में अभिनय किया राज कपूर और वैजयंतीमाला ने। इस मधुर गीत को अपना स्वर दिया लता मंगेशकर और मुकेश ने। ये गीत शैलेंद्र ने लिखा और संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म का नाम है 20 साल बाद। यह गीत फिल्माया गया विश्वजीत के साथ वहीदा रहमान पर। गीत को गाया लता मंगेशकर ने, बोल शकील बदायूं ने के, और इस गीत का संगीत तैयार किया हेमंत कुमार ने।

राग शिव रंजनी पर आधारित कार्यक्रम का अगला गीत 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से, जिसमें कमल हासन के साथ रति अग्निहोत्री ने अभिनय किया। इस गीत को गाया लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राग शिव रंजने पर आधारित आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिर गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरी जंग से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर के साथ नितिन मुकेश ने, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। यह गीत फिल्माया गया गिरीश कर्नाड के साथ नूतन पर। फिल्म आई थी 1985 में। आइए सुनिए प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

मैं तो इस गीत के साथ ही आज के फिल्म संगीत प्रोग्राम से अपने दोस्त संजय बैद को आज्ञा दें। नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। समय मिलाइए, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुने हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आपकी फरमाइश पर फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होगा अनुरोध गीत। दिन में 12:30 पर गैर फिल्मी गजलों के प्रोग्राम सुगम संगीत में हम आपको सुनाएंगे गायक चंदन दास की गाई चंद गजलें। दिन में 12:50 पर खेत खलियान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा फसल उत्पादन में मौसम का प्रभाव। दिन में 1:05 पर महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर, साधु शहर से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल, हिमानी जाखड़, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर, रातानाडा जोधपुर से नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, तन्मय गजभिये, नौहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथा, मनोज, हिमांशु, पवन सुथा, शंकर बिहारी, शिवकुमार, सोनू, महेंद्र सुथार, कालू, गांव रामसरा नोहर से सादी खान, हनीफ खान, भादरा अनूप शहर से फरमाइश पहुंची है गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारी शर्मा, ममता, मीतू, किन्नू, अक्षय, महावीर लोहरा और इनके परिवार के साथियों की, गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डिडन, साकिला, संदीप, अनवर, अंकु बावरा, ये फरमाइश हम तक पहुंची है संगरिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी, योगेश, मनीष, माही, केदार, चित्रा, बद्रा और युवंशी की, अरायन से बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता गौड़, आप सबको हम सुनवाते हैं धर्मात्मा फिल्म में मुकेश और कंचन का गाया नगमा, जिसे लिखा इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सबके अनुरोध पर चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, केसे सिंहपुर से राजकुमार ठटी, कमल ठटी, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालनी तिवांशी, वाणी और जीवन सिंह बुक, नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, झोरढ़ानी गांव भैलोल नगर से नरेंद्र झोरड़, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीता, आरवी झोरड़, गांव होडू जिला बालोत्रा से उमेदाराम, सुरेश कुमार, श्रुतेश गोदारा, संग्रह से श्याम मीढ़ा और सुमन मीढ़ा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, वरकट बकाल, बुरढाना से नारायण हागे, कमल दिव्या हागे और इनके साथ है जय, गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन बारासा, कासम कॉलोनी सनावद से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश, नूरू मीणा, इरफान मीणा और काशिफ, मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानीगर, रवि शिल्पा, आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, आप सबको हम सुनवाते हैं

हीरा पन्ना फिल्म में लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आइए प्रोग्राम के आखिर में सुने सुहाग फिल्म में मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आवाज हम आपको बता चुके हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की, पसंद आप सब साथियों की। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। MLB रोड ग्वालियर से श्रेष खुराना, किरण, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू। पदमपुर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। शाहदरा

दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, अनारकली बजा जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, सुचा पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, भारेवाला से विकास जाखड़, संदीप जाखड़, भावना, हेमंत, तेज प्रताप, वान्या और अभिमन्यु जाखड़, श्री करणपुर से पवन कटारिया, समीर, शालू कटारिया, गांव लोहिडी, जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, इनके साथ हैं चंद्रेश गोहर, जोधपुर राजस्थान सूर्यनगरी से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी हिमाक्ष, कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय। आप सब सुने अपनी पसंद पर सुहाग फिल्म का ये गीत।

अभी आप अपने साथी संजय बैद के साथ फ्रांसी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉर्नर सिटी चैनल है। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुने गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। आज फनकार हैं चंदन दास। पहले सुने मुराद का लिखा ये कलाम।

सुगम संगीत कार्यक्रम में भी आप चंदन दास की गाई गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:50 हो रहे हैं। ये समय है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेत खलियान का। आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है फसल उत्पादन में मौसम का प्रभाव।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों गर्मी तो खूब हो रही है, लू चले पूरे दिन, तो यहीं कर गया अपना कोई साफा पोतिया बेकन्ने रखा और सिर ढके रखा एकदम जी सूं किया क्या अपनों जो को गर्मी से बचाव आप कर सका। और खासकर अपना जी का बुजुर्ग है पशु धन है बंगो भी ध्यान रखा और सागे सागे फसल बाड़ी है बिंगो भी आपने खूब ध्यान रखना है। और किसान भाइयों गर्मी देखो ऋतु अनुसार सर्दी है गर्मी है बिरखा है हो ही है, पर आप देखा कि कोई भी मौसम में जद भी बदलाव हुआ नहीं तो बिंगो सह से ज़्यादा असर जो है वो अपना फसल बाड़ी पर ही पड़े। और आपने आप भारत की बात करा या कटे की आप बात करा, मान लो अपने प्रदेश की चाहे बात कर लें आप, तो अपनी जी की अर्थव्यवस्था है नहीं बा खेती पर आधारित है, ज़्यादातर लोग जी का खेती पाती से ही जुड़ेड़ा है। तो यहीं करके जिद भी मौसम में बदलाव हुए तो आपने जो को रहन सहन है खान पान है या फिर आपने जी की अर्थव्यवस्था है बिंग में बहुत फर्क पड़े। और लगभग बतावे है जानकार जी का है वह बतावे है कि 60% जी का लोग है वह बंगिया जीविका जी की है वह खेती से जुड़ेड़ी है। तो यहीं करके जद जद भी मौसम में बदलाव हुए तो भी शू के है कि सगला काम पर ही असर पड़े पर खेती पाती पर सह से ज़्यादा असर जो है वो खेती पर ही आवे। और देखो एक ऋतु के अनुसार बदलाव हुआ है तो वो तो ठीक है, तो बिंग में क्या आप अपनी फसलें हैं जी की वह भी बदल बदल गया आप बीजा हाँ और किस्मा भी आजकल तो अच्छी अच्छी किस्म आ रही है तो किसान भाई वह किस्मों को भी चुनाव भी तरह करें, पर कई बार आप देखा कि बेरुत को जो को बदलाव हो जाए मौसम में तो फिर भी शू की है कि ये किसान भाइयों नुकसान बहुत हुआ है। तो अभी आप देखो आ दिन में आप लेर ले कई साल की बात करा तो आ साल में आप देखा कि जो को तापमान है वो आई बारी आप देखा कि ज़्यादा ज़्यादा होने लग रही है तो बीच में के फसलों पर असर पड़े और इतना लू चल है जदा अपने फसल है पिंगो बचाव करना औखो हो जाए। और सागे सागे एक बात और है कि पानी की भी कमी है तो पानी की भी कमी हो रही इतना लू चल है इतनी गर्मी हो तो भी मैं क्या फिर फसल ना अपने बचाना जो है वो औखो हो जाए। और इतने आपने बिरखा की मात्रा है वह कम रेवे तो भी आपका नुकसान है और बहुत ज़्यादा हो जाए तो बिंग में भी नुकसान है। तो इनका बांध बांध का न्यारा न्यारा कारण है जिका आपने वैज्ञानिक है वह बतावे है कि जिकी भांत भांत की जिकी जहरीली गैंसा हैं तो वह ज़्यादा होने से भी किए गर्मी ज़्यादा हो जाए या मौसम में बदलाव ज़्यादा होवे। इनके सागे कि सागे किसान भाइयों आप देखा कि आपने जिका रूख है वह भी खेतंग में बहुत कम रह गया है। आप गौर करके देखा तो देखो पहला कितना दरखत होया करता पेड़ पौधा खूब होया करता खेतों में, पर अब आ दिन आप देखा तो सीधा देखो खाली बाण पड़े दिखे हरियाली तो कठा कठा ही दिखे आपने। तो यहीं करके रूख जिका है वह आपने ज़्यादा ज़्यादा लगाना चाहिए जिस किया कि आपने जो मौसम है अभी मैं जो चाणचक है जो बदलाव हुआ वो नहीं होना चाहिए। और बिरखा को भी आप रूख की जो बात करी तो बिरखा देखो अपने रूख अंगों पर ही निर्भर है, कई बार रूख कम हुआ है तो बीज गए या तो बिरखा जरूरत से ज़्यादा हो जाए और कै जरूरत से कम ही हुआ है। जरूरत से कम हुआ है जब तो देखो सूखा वाली जी की स्थिति है वह बन जाए तो अभी में भी नुकसान है और ज़्यादा होने से क्या बाढ़ आ जाए या खेतों में पानी ज़्यादा भर जाए तो बीच भी अपनी फसल जी की है वह खराब हो जाए उत्पादन जो है बहुत ही कम रह जाए तो बीच भी आपने नुकसान है। किसान भैयाओं के सागे सागे आपने फसल चक्कर जो है अभी में भी बदलाव करना चाहिए। अभी आप देखा कि किसान भाई कई किसान भाई जी का है जागरूक है जी का वह तो फसलां भांत भतीली जी की फसलां हैं वह में बदलाव कर करके बिजाई करा है, पर कई जगह आप देखा कि जी की सागी सागी फसलां हैं वे आप बारी बारी बांगी बिजांत करा तो बीच में क्या है कि पानी जो है बिंगी लागत ज़्यादा हो और जटे जटे मीठो पानी है तो बैठा आप देखा किसान भैया कुआँ लगा रखे है ट्यूबवेल लगा रखे है तो भी मुख्य है कि धरती के मऊ भी पानी की जी की खपत है वह बहुत ज़्यादा होने लग रही है और आपने धरती वालों जी को पानी है बिंग उस स्तर भी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे है तो इसमें भी मौसम का में बहुत फर्क पड़े। तो इन करके फसलां जी की आप बदलाव कर करके बीजा एक बारी कम पानी वाली फसल की आपने बुआई करनी चाहिए और एक बारी आपने ज़्यादा बुआई वाली से आप कर लें तो बीज चूँकि है कि दोनों अंग में संतुलन बन जाए तो पानी की भी उनमें खपत है वह ज़्यादा को नहीं हुए। इनके सागे सागे किसान भाइयों जद जद भी आप देखा कि मौसम है बिंग में बदलाव हुआ है तो बीज चूँकि है कि कीट और जी का रोग है बंग में भी वृद्धि जी की ज़्यादा हुआ है तो आप कई बार देखा जी बैक्टीरिया है कवक है या फिर जी दूसरा जी का रोगाणु हुआ है तो बंगी जी की प्रजनन में वृद्धि है बा ज़्यादा गर्मी का माह हुआ है या फिर ज़्यादा नमी का माह हुआ है तो इसमें भी किए कि अपना फसल बाड़ी ने नुकसान हुआ है क्योंकि देखो कीट रोग जी का है बंगी रोग

0: था। राम राम।
1: फसल उत्पादन में मौसम का प्रभाव। खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब से थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है और उन्हें इस संकल्प के लिए भागीदारी निभानी होगी। देश में 47 स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अपनी हाल की 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ ग्लोबल एक्सपोज।
0: प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,60,000 से अधिक भर्तियों पर काम चल रहा है, जिसके लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थी, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया।
2: आप जब भी कोई फैसला लें, तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो, ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित।
0: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर करीब 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम 3री बार बढ़ाए गए हैं। हाल के दिनों में इन पर अब तक लगभग 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कोटा में एक नए इलेक्ट्रिक लोको शेड खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे बिजली के इंजनों के रखरखाव और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोटा में इस लोको शेड के बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अजमेर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार बनाया जाएगा। इस पर 28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत, बजरी खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में 392 से अधिक मामले

0: दर्ज किए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पिछले महीने जारी निर्देशों की पालना में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाया गया है। धौलपुर और करौली जिला पुलिस की ओर से चंबल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: सूरतगढ़ है, 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम महिला जगत।

0: नमस्कार बहनों और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत, और मैं हूं आपकी दोस्त मंजू शर्मा। कार्यक्रम का आगाज करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को कैसे बिजी रखें ताकि वे घर पर बोर भी ना हों और उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिले। बहनों, गर्मी की छुट्टियाँ आते ही एक सवाल हर उन माता पिता के मन में आता ही है कि जिनके बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, कि बच्चों को पूरे दिन मोबाइल दें या कुछ ऐसा करवाएं जिससे उनका सही विकास हो और उनकी रुचि का पता भी लगाया जा सके। तो इसी सवाल का जवाब है समर कैंप। तो हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए समर कैंप करना कितना फ़ायदेमंद है। समर कैंप बच्चों के लिए सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व निर्माण की पहली सीढ़ी होता है। सबसे पहले बात करते हैं आत्मविश्वास की। समर कैंप में बच्चे नए दोस्तों से मिलते हैं, स्टेज पर बोलना सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं जिससे कि वे खुलकर अपनी बात रखना सीखते हैं। एक बात और बहनों, इस कैंप से वे समय प्रबंधन करना भी भलीभांति सीख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की ललक उत्पन्न होती है और कुछ ही समय में उनमें छुपा कौशल निखर कर सामने आता है।
1: बुद्ध वीर सोम मंगल बुद्ध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों,

एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा।

0: मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,

खेल खेल में सिखा दे जीने का हर ढंग, वही छुट्टियां बन जाती हैं बच्चों का उजला रंग। मैनू गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप के विषय पर। इस कैंप से बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। आउटडोर गेम्स, योग, डांस, दौड़ भाग आदि एक्टिविटीज़ बच्चों को मोबाइल और टीवी की दुनिया से बाहर लाकर स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। समर कैंप का एक और बड़ा फायदा है रचनात्मकता का विकास। चित्रकला, हस्तकला, संगीत, नाटक, इन सब के जरिए बच्चों की छुपी प्रतिभा बाहर आ जाती है। कई बार माता पिता को यही पता चलता है कि उनका बच्चा किस चीज़ में खास है। समर कैंप बच्चों को अनुशासन, समय की कीमत, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। आज के समर कैंप तो बच्चों को कंप्यूटर, कम्युनिकेशन स्किल्स और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। समर कैंप बच्चों के लिए मनोरंजन, शिक्षा, विकास का बेहतरीन संगम है। सही तरीके से चुना गया समर कैंप बच्चों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बहनों, गर्मी का मौसम अपने यौवन पर है और इस मौसम में यदि आप कामकाजी हैं और उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है तो गर्मी का असर हमारे शरीर के साथ साथ बालों पर भी पड़ता है। तेज़ धूप, बढ़ता

तापमान और लू बालों की नमी छीन लेती है, जिससे वे रूखे, बेजान और कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोगों को इस मौसम में बाल झड़ने, दो मुहे होने, डैंड्रफ और सिर में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गर्मी के मौसम में बालों की विशेष देखभाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो गर्मी में बालों की देखभाल का सबसे आसान और प्रभावी उपाय है सिर को धूप से बचाना। जब भी घर से बाहर निकलें, सिर को दुपट्टे, टोपी या स्कार्फ से ढक लें। इससे न केवल बाल धूप की सीधी किरणों से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि लू का असर भी कम होता है। इस मौसम में हफ्ते में कम से कम 2 बार बालों में तेल की मालिश आवश्यक रूप से करें। नारियल तेल, बादाम तेल या सरसों का तेल बालों के लिए लाभकारी होता है। रात को हल्के हाथों से तेल की मालिश करके सुबह हल्के शैम्पू से बाल धोना एक अच्छा उपाय है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और गर्मी से भी बचाव होता है।

बहनों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे गर्मी के मौसम में बालों की देखभाल कैसे करें। बालों की सेहत सीधे हमारे शरीर की सेहत से जुड़ी रहती है। गर्मी में शरीर में पानी की कमी होना आम बात है, जिसका असर बालों पर भी दिखाई देता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और बालों को भी पोषण मिलता है। इसके लिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा नारियल पानी, छाछ और फलों का रस भी लाभकारी होते हैं। इसके साथ ही बालों की अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार जैसे मौसमी फल, दालें, दूध, दही, मेवे बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और बहनों, बालों को गर्म पानी से धोने से बचना चाहिए। और इसके साथ ही गर्मी में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन जैसे उपकरणों का अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मी में कुछ घरेलू उपायों द्वारा भी बालों का ख्याल रख सकते हैं। दही और एलोवेरा का हेयर पैक बालों को ठंडक और पोषण देता है। इसी तरह मेथी दाना या आंवला बालों के लिए अत्यंत फायदेमंद माने जाते हैं। बहनों, बाल हम महिलाओं के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इस गर्मी में अपने बालों को भी उतना ही प्यार और सुरक्षा दें जितनी आप अपने शरीर को देते हैं।

मैंने क्रोध मनुष्य की स्वाभाविक भावना है, प्रवृत्ति है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमें अपमान महसूस होता है या कोई स्थिति जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब गुस्सा आना सामान्य सी बात है। लेकिन जब यही क्रोध बार बार और अनियंत्रित रूप से प्रकट होने लगे, तो ये हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तित्व के लिए हानिकारक बन जाता है। इसलिए क्रोध को दबाने की नहीं, नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक क्रोध से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है, नींद प्रभावित होती है और तनाव बढ़ता है। क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। कई बार गुस्से में लिया गया गलत निर्णय जीवन भर की समस्या बन सकता है। तो मैंने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, और जब हम इसके कारणों की पहचान कर लेते हैं, तब उन्हें संभालना आसान हो जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाना बहुत कारगर उपाय है। उस समय ना बोलें ना निर्णय लें, गहरी सांस लें और मौन रहें। इससे आपसी बहस या विवाद को टाला जा सकता है। नकारात्मक सोच क्रोध को भड़काती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से क्रोध अपने आप कम होने लगता है।

बहनों, गीत से पहले चर्चा कर रहे थे कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। क्रोध का एक बड़ा कारण सही संवाद का अभाव भी होता है। अपनी बात को गुस्से में कहने के बजाय शांत और स्पष्ट शब्दों में रखना सीखें। अपनी दिनचर्या सुधारें। सुबह जल्दी उठकर नियमित योग, ध्यान और व्यायाम करने से मन में स्थिरता आती है। शारीरिक ऊर्जा का सही उपयोग क्रोध को नियंत्रण करने में सहायक होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बात की प्रतिक्रिया ही दी जाए। कभी कभी क्षमा कर देना और आगे बढ़ जाना भी समझदारी होती है। जब भी क्रोध आए, स्वयं से बात करें, शांत रहो, ये स्थिति मेरे नियंत्रण में है। गुस्सा समाधान नहीं है, इसलिए भड़के नहीं, शांत रहें, धैर्य और समझदारी से बात करें, कार्य करें और सोचें कि मुझे गुस्सा नहीं करना है।

बहनों, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में खान पान की आदतें तेज़ी से बदल रही हैं। एक ओर घर में माँ के हाथ का सादा पौष्टिक और संतुलित भोजन मिलता है, जिसे हम अक्सर डाइट फूड कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी ओर घर से बाहर निकलते ही हमारी पसंद बन जाता है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, कोल्ड ड्रिंक जैसे जंक फूड। ये विरोधाभास लगभग हर घर में देखने को मिलता है। घर का बना भोजन, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, दही, ये सब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर संतुलित मात्रा में मौजूद रहते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। लेकिन आज की पीढ़ी, विशेषकर बच्चे और युवा, घर के खाने को बोरिंग या डाइट फूड मानने लगे हैं।

बहनों बात कर रहे थे घर के खाने और बाहर के खाने की। अक्सर लोग जंक फूड खाने का कारण समय की कमी बताते हैं, लेकिन ये सच है कि धीरे धीरे ये आदत पक्की हो जाती है। थोड़ी सी योजना बनाकर घर का खाना भी स्वादिष्ट बना सकते हैं और आकर्षक भी बना सकते हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपने खाने के प्रति जागरूक हों, घर के खाने को कमतर ना आंकें और जंक फूड या होटल के खाने को स्टेटस सिंबल ना बनाएं। परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, बच्चों को घर के खाने के फ़ायदे समझाएं, क्योंकि स्वाद क्षणिक होता है और सेहत जीवन भर साथ देती है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो, अब बात करते हैं कुछ जीवन उपयोगी

जीवन एक सफ़र है, कभी आसान कभी छोटा कभी कठिन, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लें, अपना लें, तो यही सफ़र और भी सुंदर बन सकता है। आज हम बात करेंगे जीवन में उपयोगी बातों की। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि समय का सम्मान करें। किसी के लिए समय रुकता नहीं, जो समय आज है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित भोजन, थोड़ी सी कसरत और भरपूर नींद लें। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती बहनों, हर दिन हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। कम बोलें ज़्यादा सुनें, क्योंकि सुनने से समझ बढ़ती है और समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करें, गुस्सा पल भर में आता है लेकिन नुकसान उम्र भर का दे जाता है। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखें और रिश्तों को समय दें, क्योंकि पैसा फिर भी आ सकता है लेकिन रिश्तों की भरपाई आसान नहीं होती। और बहनों, खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी।

0: महिलाओं के लिए भी महिला जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज।

0: जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने

0: कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित दो स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद

0: राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत। पहला गीत एस जानकी और मनहर का गाया हुआ, शब्द रचना फारूक कैसर की, संगीत बप्पी लहड़ी का और फिल्म का नाम है माँ कसम।

सिक्का इस फिल्म में सुनिए आशा भोसले के साथ विजय बेंडिक्ट को। गीत लिखा इंदिवर ने, धुन तैयार की एक बार फिर से बप्पी लहड़ी ने।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सुनिए देव कोहली का लिखा गीत। गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल का और फिल्म का नाम है ले चल अपने संग।

बस यूं ही। इस फिल्म में सुनिए मेहनाज को। शब्द रचना सुमू की, संगीत राजीव मर्लिन का।

ये प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं हल्ला बोल फिल्म में अमजद फरीद साबरी को। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार हैं सुखविंदर सिंह।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज़्यादा लोगों को तकर्री नामे सौंपे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे।

बच्चों ने कांगो में बोला कि बुंडी बुगियों किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। पूरे मुल्क में 47 मकामात पर इस रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवान जिनको पूरे मुल्क से चुना गया है वो वजारत रेलवेज, वजारत दाखिला, वजारत सेहत और आला तालीम के महकमे समेत दीगर कई वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मौाक़े और मुलाजमत दस्तियाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रूशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन शराकत दार बन रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के आजम के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में आईसीएफ रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12 लाख रोजगार मुहैया कराए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाहात, तब्दीली और कारकर्दगी जैसे उसूल सरकार की कामयाबी का राज हैं। जनाब मुरुगन ने आवाम पर जोर दिया कि वो सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों और प्रोग्रामों से वाकिफ रहें। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया है। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकरीरनामे सौंपे गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बरवक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख इस को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातजा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातजा की तकरूरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातजा की तकरूरी का इम्तहान TRE 4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब खत्म हो गए हैं। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले नीट UG के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की इजाज़त दी जाएगी। वजीर आला ने जिला इंतजामिया, मंदिरों और गैर सरकारी तंजीमों से भी कहा है कि वो बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और दीगर बड़े मकामात पर तलबा और उनके वालिदैन के लिए अनाज और भुनी हुई दालों से तैयार किया हुआ आटा, पीने के पानी और सत्तू का इंतजाम करने में मदद करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख में 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई तक थी। CBSE ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला किया गया।

बोर्ड ने बताया कि तलबा जब आपकी कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सीबीएसई ने उम्मीदवारों से कहा है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और इस अमल को मुकम्मल करें। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड यूसीसी के सिलसिले में एक अहम कदम उठाया है और वजीर आला मोहन यादव ने सेक्रेटरिएट में वेबसाइट ucc.mp.gov.in की शुरुआत की है। इस वेबसाइट के जरिए समाजी तंजीमें, सियासी जमातें और लोग मुजवजा यूसीसी के बारे में अपने ख्यालात और तजावीज पेश कर सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फरहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल्काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है।

0: नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फरहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसूत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीका के वजीर खारजा नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत में अमरीकी सफीर के मुताबिक यह दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजियों, तजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। इस तंजीम के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस एधेनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस वक्त इस वायरस के कौमी सतह पर फैल जाने का बहुत ज्यादा, इलाकाई सतह पर ज्यादा और आलमी सतह पर फैलने का कम अंदेशा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 82 अफराद के इबोला में मुबतला होने और 7 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमतों में आज 1 रुपये का इजाफा किया है। कीमत में इजाफे के बाद कौमी राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की कीमत 81 रुपये 9 पैसे हो गई है। इंडियन ऑयल ने सार्फिन और आम लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने एक बयान में कहा है कि खुर्दा मराकिस पर सारफीन जिन मौजूदा हालात का सामना कर रहे हैं वो आर्जी किस्म के हैं और कुछ मकामात पर मांग और सप्लाई और फिर से तकसीम में अदम तवाजुन होने की वजह से ऐसे हालात हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की है। IMD के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी हिस्सों, वस्ती और मशरकी भारत के ऊपर गर्म हवाओं का मौसम बने रहने के इम्कानात हैं। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकरीरी नामे सौंपे। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की बुंडी बुगियो किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की आवाजों में सौदागर फिल्म से था ये गीत। इससे पहले आपने सुना विजय पथ फिल्म का नगमा कुमार सानू का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डोगरी लोकगीत।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज आपने गुलाम मोहम्मद और साथियों के गाए हुए डोगरी लोकगीत सुने। अब आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

साहिब फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे अलका एस जानकी और बप्पी लाहिरी की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में है। फिल्म का नाम है नाजायज।

फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे।

सिंदूर फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को सुनिए, फिल्म का नाम है मेहरबान।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये नगमा शगुन फिल्म से हमने आपको सुनवाया। इसके साथ ही फिल्मी मौसीकी का आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकरीरी नामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की बुंदी बोगियो किस्म के खतरे को बहुत ज़्यादा के ज़ुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जैंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तनजीमों में मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। पूरे मुल्क में 47 मकामात पर इस रोज़गार मेले का इनेकाद किया गया था। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवान जिनको पूरे मुल्क से चुना गया है वो वजारत रेलवेज़, वजारत दाखला, वजारत सेहत और आला तालीम के महकमे समेत दीगर कई वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोज़गार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मौका और मुलाजमत दस्तयाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रोशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी

दुनिया का एक भरोसामंद सप्लाई चेन शराकत दार बन रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज़्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बरवक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है। बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकर्रुरी नामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे सौंपे गए। पार्लिमानी उमूर और इत्तला'आत व नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में ICF रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोज़गार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरगन ने बताया कि वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज़ ने 12 लाख रोज़गार मुहैया कराए हैं। उन्होंने कहा कि असलाहत, तब्दीली और कारकर्दगी जैसे उसूल सरकार की कामयाबी का राज हैं। जनाब मुरगन ने आवाम पर जोर दिया कि वो सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों और प्रोग्रामों से वाकिफ रहें। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सियाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वीं कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका अहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकरूरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकरूरी के इम्तिहान TRE4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने इतला दी कि महकमा तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायज़ा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले NEET UG के फिर से इम्तिहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त दी। वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया, मंदिरों और गैर सरकारी तंजीमों से भी कहा कि वो बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और दीगर बड़े मकामात पर तलबा और उनके वालदैन के लिए अनाज और भुनी हुई दालों से तैयार किया हुआ आटा, पीने के पानी और सत्तू का इंतज़ाम करने में मदद करें। इम्तहानात की कौमी एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए 21 जून की तारीख का ऐलान किया है। इससे कबल 3 मई का इम्तहान पेपर लीक इल्ज़ामात के बाद मनसूख कर दिया गया था। मरकजी जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC के सिलसिले में एक अहम कदम उठाया है और वजीर आला मोहन यादव ने सेक्रेटेरिएट में वेबसाइट ucc.mp.gov.in की शुरुआत की है। इस वेबसाइट के जरिए समाजी तंजीमें, सियासी जमातें और लोग मुजवजा UCC के बारे में अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश कर सकते हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख में 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई थी।

0: सीबीएसई ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि तलबा जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सीबीएसई ने उम्मीदवारों से कहा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इस अमल को मुकम्मल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी वजीर ख्वाजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुलकाहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। कोलकाता पहुंचते ही अमरीकी वजीर खारजा ने मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रेन होम का दौरा किया। अमरीका के वजीर खारजा नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत में अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजियों, तजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज़्यादा लोगों को तकर्रुरनामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 उसातज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात। शाम के 5 बजने को है दूसरी मजलिस का वक्त, अब खत्म होता है।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे आधुनिकता के मायनों से आज की बात के साथ। दोस्तों, आधुनिकता का अर्थ केवल नए कपड़े पहनना, नई तकनीक अपनाना या पाश्चात्य संस्कृति की नकल करना नहीं है। आधुनिकता का वास्तविक मायना यही है कि समय के साथ आगे बढ़ना, वैज्ञानिक सोच अपनाना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ये आधुनिकता मनुष्य की सोच, व्यवहार और जीवन शैली में आए उस बदलाव को दर्शाती है जो उसे अधिक जागरूक, स्वतंत्र और प्रगतिशील बनाता है। साथियों, आज के युग में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है।

मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और आधुनिक यातायात के साधनों ने दुनिया को छोटा बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिकता का बड़ा योगदान है। अब हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और नई नई जानकारियां आसानी से हासिल कर सकते हैं। इससे हमारी सोच व्यापक हुई है और हम पुराने अंधविश्वासों से बाहर भी निकल रहे हैं। मित्रों, आधुनिकता का मतलब अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल जाना नहीं है। यदि आधुनिकता के नाम पर हम अपने संस्कार, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को छोड़ दें तो ये सही आधुनिकता नहीं कहलाएगी। सच्ची आधुनिकता वही है जिसमें व्यक्ति नई सोच अपनाए लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे। श्रोताओं, इसके साथ ही आधुनिकता के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। अत्यधिक मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग हम लोगों को सामाजिक जीवन से दूर कर रहा है। हम लोग परिवार और रिश्तों को समय कम देने लगे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि आधुनिकता को संतुलित रूप से अपनाया जाए। वास्तव में हमें आधुनिक बनते हुए अपनी संस्कृति, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची आधुनिकता का अर्थ है। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे। आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म साजन की सहेली का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की। श्रोताओं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान बहुत तेज, सरल और सुविधाजनक हो गया है।

कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन, विभिन्न डिजिटल साधनों के उपयोग से दुनिया एक छोटे से गांव जैसी प्रतीत होने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, संचार और मनोरंजन जैसे अनेक क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं को सुरक्षित रखना, उन्हें संसाधित करना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराना है। पहले किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से ये कार्य कुछ ही सेकंड में हो जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथियों, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र

और धन दोनों की बचत होती है। साथियों, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी ने कार्यों को सरल बना दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स के माध्यम से हम लोग घर बैठे खरीदारी और लेन देन कर सकते हैं। इससे व्यापार में तेजी आई है और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ दुष्प्रभाव भी है। इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग बच्चों और युवाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। साइबर अपराध, डेटा चोरी और गलत सूचनाओं का प्रसार भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसीलिए इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना आवश्यक है। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। यदि इसका सही और संतुलित उपयोग किया जाए तो ये समाज और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो श्रोताओं, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म तोहफा का ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी योजना की। श्रोताओं, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के माध्यम से मेधावी छात्राओं को आर्थिक सहायता और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। ये योजना विशेष रूप से लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। कक्षा 8वीं की छात्रा को 25,000, कक्षा 10वीं की छात्रा को 50,000 व कक्षा 12वीं की छात्रा को 75,000 और स्कूटी प्रदान की जाती है। इससे छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी होती है। वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। मित्रों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को बढ़ाना है। कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी बेटियों की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसे में ये योजना छात्राओं के लिए सहायक सिद्ध हुई है। इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है और समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। दोस्तों, इस योजना ने अनेक छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी है। शिक्षा प्राप्त कर लड़कियां आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही है। ये योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, जबकि छात्राओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। तो साथियों, चर्चा तो और भी करेंगे, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म साथ साथ का ये गीत।

दोस्तों, हमारे समाज में बुज़ुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बुज़ुर्ग परिवार और समाज के अनुभव, ज्ञान और संस्कारों के

भंडार होते हैं। इन्होंने अपने जीवन के लंबे अनुभवों से बहुत कुछ सीखा होता है जो नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति में हमेशा से बड़ों का आदर करने की परंपरा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों और संस्कारों में माता पिता व बुजुर्गों को भगवान के समान माना गया है। इनके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता और सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वो समाज में भी आदर प्राप्त करता है। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव होते हैं। वे बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव सिखाते हैं। उनके अनुभव कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। परिवार में बुजुर्गों की उपस्थिति से प्रेम, एकता और अनुशासन बना रहता है। आज के आधुनिक जीवन में कई लोग अपने काम और व्यस्तता के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा करने लगे हैं। कुछ लोग उन्हें बोझ समझते हैं, जो बहुत दुखद बात है। वृद्धावस्था में उन्हें प्रेम, देखभाल और सम्मान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, सरकार और समाज को भी बुजुर्गों के कल्याण के लिए उचित कदम समय समय पर उठाने चाहिए। वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। साथ ही बच्चों को बचपन से ही बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए। बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, जबकि हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान भी है। तो साथियों, बातें तो और भी करेंगे। आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म दूध का कर्ज का ये गीत।

रूप से छपाई का कार्य करते हैं। जयपुर में कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई के कार्य को महाराजा स्वाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया था। बंधेज का कार्य। श्रोताओं, बंधेज का कार्य जोधपुर, जयपुर, शेखावटी, बीकानेर और सीकर में अधिक होता है। जयपुर का लहरिया व पोमचा अधिक प्रसिद्ध है। पोमचा जच्चा स्त्री पहनती है, जिसमें मुख्य रूप से पीला रंग होता है और चारों ओर किनारों पर लाल रंग होता है। पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पैचवर्क। साथियों, विविध रंग के कपड़ों के टुकड़े काटकर कपड़ों पर विविध डिजाइनों से सिलना पैचवर्क कहलाता है, जो शेखावटी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। ब्लू पोटरी। दोस्तों, क्वार्ट्ज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः नीले, हरे एवं अन्य रंगों से चित्रण ब्लू पोटरी कहलाता है। राजस्थान में ब्लू पोटरी के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये कार्य मुगलों के समय जयपुर महाराजा मानसिंह प्रथम के काल में ही आगरा व दिल्ली से जयपुर आया। भारत में ये कला ईरान से आई थी। कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धस्थ कलाकार थे। इन्होंने इस कला को विश्व स्तर तक प्रसिद्ध कर पुनर्जीवित किया। तो मित्रों, अन्य हस्तकलाओं को जानने से पहले लीजिए अब सुनिए फिल्म स्वयंवर का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राजस्थान की हस्तकलाओं की, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग। मित्रों, कपड़े पर परंपरागत रूप से हाथ से छपाई का कार्य संपूर्ण राजस्थान में होता है। छपाई का कार्य करने वाले छिपे कहलाते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। बाड़मेर में खत्री जाति के लोग परंपरागत

दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की हस्तकलाओं की, जैसे टेराकोटा। साथियों, पकाई हुई मिट्टी के बर्तन व खिलौने समस्त राजस्थान में बनाए जाते हैं, लेकिन राजसमंद जिले का मोलेला गांव और चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाने में बहुत प्रसिद्ध है। थेवा कला। श्रोताओं, प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म व कलात्मक चित्रांकन कार्य किया जाता है, जिसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्थ है। इसमें हरा रंग अधिक प्रयुक्त होता है। थेवा कला के जनक प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी माने जाते हैं। कोफतगिरी। मित्रों, लोहे की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफतगिरी कहलाती है। कोफतगिरी कला ईरान से पंजाब लाई गई और वहां से गुजरात व राजस्थान में इसे लाया गया। बादला। दोस्तों, जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतलें, जिनमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इनके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। जोधपुर जिले के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मुरादाबादी का काम। साथियों, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नकाशी का कार्य मुरादाबादी का काम कहलाता है। जयपुर व अलवर जिले में ये काम बहुताय से होता है। तो मित्रों, चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म यस बोस का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1951 में चीन ने तिब्बत के साथ एक 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 23 मई के दिन ही सन 1929 में वोल्ट डिज्नी के मशहूर कार्टून चरित्र मिकी माउस का पहला बोलने वाला कार्टून द कॉर्निवल किड रिलीज किया गया था। आज ही के दिन सन 1984 में भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला भी बनी थी। मित्रों, 23 मई के दिन ही सन 2016 में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया गया था। आज ही के दिन सन 1918 में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक PC वैद का जन्म भी हुआ था। 23 मई के दिन ही सन 1919 में जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का जन्म भी हुआ था। तो साथियों, ये था आज का इतिहास। युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 6 बजे हैं, लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए।

अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी भाषा का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:30 पर और राजस्थानी में 6:45 पर। ये प्रादेशिक समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7:00, जिसमें जानकारी दी जाएगी लू से पशुधन को कैसे बचाएं, ग्वार के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, हरी खाद के रूप में टेंचा की खेती, और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी।

फिल्मी भक्ति गीत आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05। सुगम संगीत में कुछ गजलें आप सुनेंगे 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने

वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के अकॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6:05 होने को हैं। इस समय आप सुना करते हैं सराय की भाषा का कार्यक्रम। आइए सराय की सुनें।

0: वास्तविक मंटू है, इनादी पुरानी झोंक कश्मीर बन दी है। कश्मीर इच नेहरू, कंजू, सपरू, गंजू, मंटू गोत अपने ना दे नाल अक्सर लोग लेंदे हैं। कहानी दे वड्डे लिखारी आदे हैं जो वड्डा लिखारी अपनी लिखत विच कोई भी लफ्ज़ या फिकरा या जुमला बिना मतलब दे नहीं आखदा। इस वास्ते एक नज़ीर दित्ती वेंदी है कि जिमें कोई कहानी शुरू थींदी है तां उच कोई बैठक है ते कंध ते कोई बंदूक लमकी है। अगर ए बंदूक टंगी होवण दा वाकया दर्ज है तां आखा वेंदा है कि इस बंदूक नाल कहानी विच कोई ना कोई खास ताल्लुक जरूर है। साई सआदत हसन मंटो ने भी अपनी कहानियां विच कोई फिकरा ए जा नहीं लिखा जो बेमतलब होवे। अपनियां कहानियां विच मजहब, फिरका परस्ती, दंगे वगैरह ते तंज करण विच मंटो साई दा कोई जवाब नहीं। उन्हां दी निक्कियां कहानियां विच इस तरह दे डिक मौजू मिलदे हन। तकसीम दे बाद ते 7 सालां विच मंटू दी कहानियां निक्कियां थींदियां गईयां। उन्हां दी मार हां विच डूंघे मार करन दी ताकत अपने अंदर रखे होए हई। अगर अंकल सैम को लिखे मंटू दे खत पढ़ूं तां मंटू दे सियासी तंज दी मिसाल साकू नज़र आंदी है ते सियासत विच उन्हां दी सोच को भी साफ दसेंदी है। एक निक्की कहानी भी देखो कि लाहौर शहर दे विच दंगा थी गया। एक दंगाई सर गंगा राम दे चौक ते लगे बुत को त्रोण की ते बुत ते है। उसे दौरान गोली कथों आके उस बुत शिकन दंगाई को आ लग दी है ते सर गंगा राम अस्पताल विच ही जख्मी को इलाज कीते गिन वेंदन। अगर कोई थोड़ा भी दिमाग लावे ते इन्हां कहानियां को पढ़ के सोचण दी कोशिश करे तो मैं दावे नाल आख सकदा कि वह कदे भी दंगे या फिरका परस्ती या मजहब की कट्टरता की हिमायत बिल्कुल ना करे सी। वह इंसानियत को सब तो वड्डा समझे सी। बस इन्हां इहो सारे गुण हैं जेड़े किसी लिखारी को वड्डा ते काबिले याद बनेंदे हैं। जी साई, मंटो एक वड्डा कहानीकार ते इंसानियत परस्त फनकार मन्ना वेंदा है। ये सब साबित करेंदे हैं के बावजूद तकसीम दे मंटो मुश्तरका लिखारी है, एक फनकार है, धर्म ते कट्टरता तो अलग उंदी अपनी एक पछाण है जो उसदे अपने बूते ते है। अज वल ए जी वड्डी शख्सियत को सलाम।
1: हुणे आप सुनदे पए आवे एक वार्ता सआदत हसन मंटो मलिक राजकुमार जी दे नाल। हुण हाजिर है एक काव्य पाठ नीरज वर्मा जी दे नाल।

0: ही सिराए के गीत दे नाल ही असाडा अज दा खास प्रोग्राम खत्म थींदा है। असा आप सब दा हार्दिक स्वागत करें दे वे सलाम नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराइकी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और

0: तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
1: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम होने ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है, ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास, डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण, आवास, स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और ये अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों

0: लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। ये परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत, कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णोदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज 2 प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएँ जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र पिछले दिनों स्वैच्छिक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों

0: ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉकड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉकड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और आरएसी धौलपुर छठी बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज़्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जाँच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी FIR और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। CMHO ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेज सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करयो जावेला। और राज्य रा उगनी हलका माए आंधी और हल्की बारिश गर्मियों थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों की जिंदगी बेहतर और आसान बनावण रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगियां माथे भरोसो जतायो है और इनने मजबूत बनावण री जिम्मेदारी कर्मयोगियां री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनवारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा कई देशां सागे साझेदारी कर रियो है जिन रो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिरावनो है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल

0: उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बत्तों बत्तों इस्तेमाल करन शुरू कहो। आखा देश माए 47 ठोड़ा रोजगार मेला लगाई चिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठना माए नौकरी लगन रा कागजात सौंपी चिया। प्रदेश माई जयपुर जोधपुर बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात दिया चिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर माए राखी जिया रोजगार मेला माए शामिल थिया। ये मौके श्री वैष्णव नवी नौकरी लागण वालाओं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम रिसोच काम करण और देश बनावण रा काम माए पूरा मनु योगदान देवन रिया रचकीनी। वह कहो कि रेलवे माए 1,60,000 बत्ता ओहदा माथे भर्ती रो काम चाल रियो है, जिन सारू 4 करोड़ बत्ता उम्मीदवार भाग आजमा रिया है। जोधपुर माए राखी जा रोजगार मेला माए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोटियाराओं सरकारी नौकरी ने देश री सेवा रो जरियो मानता थका हर पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण री भावनाओं काम करण बाबत कह्यो।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: अजमेर माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 258 और बीकानेर माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 281 उम्मीदवार ने नौकरी लगन रा कागजात सौंपया। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड राजरा दांडेवाला फील्ड माए नुआ गैस भंडार रो पतो लगायो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि करीब 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन री रेटू प्राकृतिक गैस निकलबाऊ देशी ऊर्जा उत्पादन मजबूत बनैला। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहो है कि देश माए तेल गैस री कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल री पूर्ति स्थिर है। कंपनी रे मुजब 1-22 मई बीच IOCL रा पेट्रोल री बिक्री माए 14% और डीजल री बिक्री माए करीब 18% री बढ़ोतरी थी। इन बीच तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल रा मोल माए और बढ़ोतरी करती नी है। ध्यान जोग है कि लारला 10 दिन माए तेल रा मोल माए तीजी दफा बढ़ोतरी करी ची है। लारला कुछ दिन माए करीब 5 रुपया प्रति लीटर री बढ़ोतरी फी है। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 रवारा माए जनतारी राय सारू मसौदा नियम जारी कीना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब कोई जनो हितधारक संगठन या संस्था 21 जून 2026 ताई मसौदा नियमों जुड़ी आपत्तियां या सुझाव दे सके है। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल जूना मनरेगा रिठौड़ लाइचियो है। नुआ कानून रातेत 1 साल माए 100 दिन री मजूरी री कानूनी गारंटी ने बधार 125 दिन करण रो प्रस्ताव है। विकसित भारत जी राम जी कानून 1 जुलाई सगला राज्यों और केंद्र राज वाला प्रदेशों माए लागू है जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए सोमवार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू करियो जावेला। 5 जून ताई चालन वाला ई अभियान रे दौरान पानी बचावण जुड़िया काम करिया जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई अभियान री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव अहलकारा ने पानी बचावण री मुहिम जनता ने जोड़बा सारू कहो। ई अभियान री तैयारियां रातेत आज सवाई माधोपुर रा जिला कलेक्टर कानाराम

0: ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग रा अहलकारा री मीटिंग लीनी और जरूरी हुकम दीना। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण ने बचावन सारू विलायती बबूल ने हटाया जावेला। इन सारू पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर में अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान योजना बनार काम करन सारू कहो। श्री दिलावर बबूल री लकड़ियों कोयलो बनावन री योजना बनावन बाबती हुकम दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट 2026 परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे परीक्षा ने निष्पक्ष साफ और सुरक्षित तरीकाओं करावन सारू संबंधित महकमा और प्रशासन ने मिलर काम करन बाबत कहो। मुख्य सचिव गड़बड़ी री शंका वाला परीक्षा केंद्र और जिला में खास निगरानी रखन और जरूरी तादाद में पुलिस रा जवान तैनात करन बाबती कहो। आ परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्र में थे। दोपहर पाछे 2:05 बजे तई ली जावेला। नीट री ई परीक्षा में 2,00,000 विद्यार्थियों रे शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे सरहदी जिला में हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावन रा हुकम दीना। डीग माए महिलावां और टाबरियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कां बाजारां और कोचिंग सेंटर कने खास निगरानी राख रही है। एसपी कांबले शरण गोपीनाथ बतायो कि लड़कियां ने परेशान करन वाला रे खिलाफ ऑपरेशन डिकॉय रातेत महिला पुलिस सादा कपड़ा पहर कार्रवाई कर रही है। वे बतायो कि बीएनएसएस री धारा 170 रातेत बिना वारंट गिरफ्तारियां ही करी जा रही है।
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलिंग जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930 इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना, साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके उनको देना, ये भी काम उनके द्वारा किया जाता है। राज का ऑब्वियस सिटीजन ऐप है, जैसे लगभग हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकोप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलिंग टीम ले रही है और उसको पूरा भी कर रही है।
0: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुद री हिफाजत री सिखावन देवनु कॉलेज जाते वगत वा बत्ती हिफाजत महसूस करे है।
2: यहाँ पर कालिका यूनिट है वो हमको गाइड करती है कि हमको जैसे घर से बाहर निकलते टाइम या जो कमेंटबाजी करते हैं छेड़खानी करते हैं उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है, उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है राजकोप ऐप, उसके थ्रू हम भी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090 जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
0: अरब मौसम प्रदेश रा उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हूँ गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। दोपहर पाछे सवाई माधोपुर जयपुर टोंक दौसा करौली भरतपुर कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चाली। कठे कठे छांटो छिड़को भियो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई। दूजीकानी राज्य रा आतुणी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार है, जदका कई ठोड़ा लू बाजण री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई दी इतवार ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले रहा हो सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी

चौपाल कार्यक्रम सुननी है सगला किसान भाइयों ने सज्जन भाई की घनी घनी और मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, गर्मी और लू को प्रकोप खूब हो रहा है और पूरे दिन लू चाल है, तो इं करके आप इंसू बचाव रखा और विशेषकर अपना जिका पशु है पशुधन को ध्यान आप जरूर रखा, क्योंकि कई बार आप देखा कि लू लागने से पशु अपना बीमार हो जाए और कई बार तो इतनी ज़्यादा समस्या हो जाए कि पशु की मौत भी हो जाए। तो इं करके पशुओं को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और क्योंकि देखो पशुओं के ऊपर लू को असर जो है वो होए भी ज़्यादा है, तो इं करके सावधानी रखनी चाहिए, पूरी सावचेती रखा आप और पशुओं ने बीमार होने से बचाना चाहिए। तो सबसे पहली तो आप जिकी बात ध्यान रखनी है कि पशु जठे आप रखा, चाहे बाड़े में रखा या घर में रखा, जठा भी रखा, तो बीज क्या की है छिया की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो बैठा कोई घास फूस को कोई छपरो हुए या कोई कोठा में आप रखा, या फिर कोई जिया कई किसान भाई जी का टीन वाला शेड में भी रखे, तो भी टीन वाला शेड के नीचे भी आप रखा, तो भी टीन के ऊपर आप कोई अपने जिया टाट है, बोरी है या फिर घास फूस है, वो आप ऊपर जरूर रखा, जिसमें क्या कि वो टीन जो है वो तपे ना। क्योंकि किसान भाइयों देखो जितनी गर्मी पड़े और लू चल रहा है, तो बीसू क्या कि वो लो को टीन हुए तो वो तप जाए, तो भी नीचे ताज जो है वो और ज़्यादा हो जाए। तो इं करके टीन के ऊपर आप जरूर कोई बोरी या कोई टाट है तो बीसू मैंने ढक दें, जिसमें क्या कि नीचे पशु जी करे हुए तो बने ताज जो है कम लगे। और इसके अलावा आप जठे कई पशु जियाँ किसान भाई खुला रखे या खेत में रखे, तो वे जियाँ अपना कोई रूख है दरखत है भंग है नीचे रहे, तो भी जगह भी अपन विशेष रूप से आप ध्यान रखा कि छाया जी की अब घनी छाया एकदम अच्छी चोखी छाया होनी जरूरी है। साथ साथ किसान भाइयों आप पानी जो है पशुओं ने वो दिन में 5-6 बारी बने पियानो चाहिए, एकदम साफ और ताजो पानी जो अपन पानी पियानो चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से पशु जी का है अपना वह जल्दी बीमार हुए और कमजोरी भी खूब आ जाए पशुओं में। तो यही करके पशुओं ने थोड़ी थोड़ी देर बाद में अपना बने पानी आप पहनता रहे, और जठे खुला पशु रखे जिका किसान भाई कोई बाड़े में या बारे जठे खुला रखे, तो कन्या जी की पानी वाली होदी बनाई दी है या कोई खेड़ी बनाई दी है, तो बिंग में 24 घंटा आप एकदम साफ सुथरो और ताजो पानी जो है, और पानी ठंडो हो, पानी तातो न हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी से पानी तातो भी हो जाए, तो करके पानी जो आप ताजो पानी बिंग में आप टेमो टाइम जो है भरता रहे, तो भी चूँकि कि पशु आप ही जियाँ जियाँ मन तीस लागे तो पानी पीता रहे, तो पानी की कमी ना आवे। और किसान भाइयों आप देखा कि गर्मी को जो ज़्यादा जो जोर पड़े वो दिन के 12 बजे लेगे और अथन गए 4-4:30 बजे तक ज़्यादा होए, तो बी टाइम के कि पशु आप जरूर आप अंदर छियाँ मारा रखा, और जगह किसान भाई पशु बारे खेत में चरा के लिया हुए तो बंग भी विशेष ध्यान रखा कि आप दोपहर वाला टाइम पशुओं ने नहीं चरावा, सुबह जल्दी ले जा दिन के वाला टाइम, और सिंझ वाला टाइम भी आप बने जब गर्मी कम हुए तो बी टाइम ही आप बने चराने ले जा, तो बी शू क्या कि पशु कम बीमार हुए। और सागे एक विशेष ध्यान आप रखा कि इतनी गर्मी में पशुओं ने ज़्यादा दूर आप चराण ना ले जाए, क्योंकि ज़्यादा चालने से भी गर्मी को प्रकोप हो सके, तो इतनी गर्मी में पशुओं ने ज़्यादा दूरी चालना पड़े।

तो भी में भी दिक्कत आ सके। इंगे सागे सागे किसान भाइयों आप चारे को विशेष रूप से आप ध्यान रखा कि सुको जुको चारो आप देवा पशुआना तो बिंग में हरियो चारो बिंग सागे सागे चोकर है और या फिर दाणो है वो भी आप जरूर देवा तो भी सूखे कि पशुआ ने जिका पोषक तत्व तो पूरा मिलता रहे और सागे सागे जिका खनिज लवण है बंग वो भी आप ध्यान रखा तो कुल मिला के जिको संतुलित आहार है वो ही आप पशुआ ने देवा भी सूखे कि बंग जिके है अच्छो बंगो स्वस्थ है रेवे और सागे सागे जी का पोषक तत्व है बांगी भी पूर्ति होती रहे कि भांत का भी पोषक तत्व अंगी कमी ना आवे जिसों की है कि कोई हारी बीमारी से या रोग से पशु अपना जी का वह बच्चा रहे। और आपने जी की पशुशाला है या बाड़ो है तो बिंग माँ अपने हवा को विशेष प्रबंध होना चाहिए, हवा आती जानती रहनी चाहिए, एकदम खुल्लो होना चाहिए और हवादार जगह में अपने पशुओं ने रखना चाहिए। और सागे सागे बेटा कोई पंखो है या फिर हो सके तो कूलर की व्यवस्था भी जितना ज़्यादा गर्मी है तो कूलर की व्यवस्था भी अपन बेटा करनी चाहिए। और नीचे पशुओं के जिकी बैठने वाली जगह है तो वह भी एकदम ठंडी होनी चाहिए, विंगो भी अपन ध्यान रखा। और सागे सागे पशुओं का बीमार होने का जिका लक्षण है बंग भी अपन ने तुरतो फुरत अपन ने पहचान रखनी चाहिए कि पशु जियाँ या जल्दी जल्दी सांस लेवे या खाणो छोड़ दे, उगाली ना करे। और कई बार आप देखा कि पशु को मुंह खुल्लो पड़ो रहे या पशु सुस्त हो जाए एकदम, और कई बार तो आप देखा कि पशुओं के मुंह में झाग भी आ जाए, तो ऐ जिका बीमार होने का लक्षण है, लू लागने का लक्षण है, तो ऐ लक्षण जिये ही आपन दिखे तो बिये ही आप डाक दर्जी ने बुला गए और पशुओं ने अपन दिखा गए और जिको भी बंगो कोई इलाज पानी है वो अपन ने जरूर करवाना चाहिए। और इंग माँ बिल्कुल भी आपने सावधानी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सावचेती से आप पशुओं को ध्यान रखा जिसों के अपना जिका पशु है वह बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहे और पशु होने वालों जो उत्पादन है वो भी आपने अच्छा मिला, क्योंकि पशु बीमार हो जाए तो बीच में फिर कोई दूध है या और जिका भी उत्पादन हो तो वह में भी किसान भाइयों कमी आ जाए तो आंगो भी आपने ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाइयों अगर हो सके तो पशुओं ने अपन दिन में एक या दो बारी बने नुहा भी दें। और पहले तो देखो गाँवांग में अपन देखा कि जोड़ा होया करता, अब तो कटे कटे ही रहा है और बाकी तो जोड़ा जिका है वह बिल्कुल सूख गया है या फिर कई जगह तो आप देखा कि कई गाँव में तो जोड़ा बिल्कुल बूरी दिया, तो जैठे जोड़ा है तो बेटा आप जोड़ा में पशुओं ने जिको है आथन या दिन गया टाइम आप बने एक रेकर नुहागे जरूर लेवा तो बीस भी के पशुओं ने जिके है लू से बांगो बचाव हुआ और गर्मी से थोड़ी बने राहत मिले। तो इन करके किसान भाइयों सगली बात आप ध्यान रखनी चाहिए जिसों की अपना पशु जिका है वे इं गर्मी का माँ बंगो बचा रहो उसके। देखो किसान भाइयों लू इतनी चल है कि मिनखा नहीं बचाव करना मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी देखो खेती पाती का या और घर का काम धंधा तो करना ही है, तो आपा क्या कि आपनों तो ध्यान रख लें कि आपा तो बारह जावा तो कोई सिर पर साफो बांध लें, पोतियो बांध लें, पानी को भी ध्यान रखा, खाने पीने को भी ध्यान रखा, पर पशु जिका है बेचारा अबोल जीव है वह बोल के तो बता कौन सके, तो बंगो आप टाइमो टाइम जो जरूर आप ध्यान रखा। तो किसान भाइयों बातचीत कर सें और आप और अब आप सुन से एक भजन लियो सुनो सा।

किसान भाइयों सुने आपा भजन। किसान भाइयों बात करा खेती पाती की, तो आपा कोई भी फसल की बुआई करा, किसान भाई अपना जिका है भांत भांत की फसलां उगावे है, पर कोई भी फसल आपा बुआई करने से पहला बिंग अच्छी तरह जानकारी लेगे, और अच्छे अच्छे बिंगी किस्मा है बांगी जानकारी लेगे, और अपने खेत के हिसाब से आपने बुआई करनी चाहिए। बी किस्म की बुआई करा जिकि आपने खेत खातर ज़्यादा अच्छी रेवे। इंगे सागे सागे आपा फसल खातर पहली छू ही खेत की भी तैयारी आपने जरूर करनी चाहिए। पहली छू खेत की आपा तैयारी कर लें भी मैं जरूरी जिका पोषक तत्व है, खाद है, उर्वरक है, तो भी आपने दे देना चाहिए। तो बी छू के फसल जिकी है बिंगी बढ़वार अच्छी होवे, और बी छू जिकी उत्पादन है वो भी अच्छा होवे। तो यहीं करके अपने क्षेत्र की आप बात करें तो किसान भाई जी का है ग्वार की फसल की बुआई भी करे है, और ग्वार की फसल की बात करें किसान भाई तो एक दलहनी और नकदी फसल भी है। और आपने क्षेत्र के माँ देखो जठे पानी की कमी है या फिर जठे रेतला जी का खेत है, तो बी खातर तो ग्वार की फसल बहुत ही अच्छी और बहुत फायदाली एक फसल है। और ग्वार की फसल बिया भी कम पानी में और जठे गर्म मौसम हुए, आपने जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़े, तो बिंग माँ तो बहुत ही अच्छी पैदावार दे। और इंगी अच्छी उपज खातर आपने खेत की सही तरीके से तैयारी करनी बहुत ही जरूरी है। तो खेत ने आपा पहला अच्छी तरह तैयार कर लिया जी, चूँकि आपने जिको बीज आपा बीजांगा बिंगो अंकुरण अच्छा हो जाए, और बिंग बाद में फसल को जिको स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहे और बढ़वार भी बिंगी अच्छी होवे। तो किसान भाइयों पहले आपा खेत ने गहरी जुताई जी की माटी पलटन वाला हल होवे बीच में अच्छी तरह जुताई कर लें जी, चूँकि के बिंग में कोई खेत के में अपने खरपतवार है या फिर कोई कीट है या कोई पुराना फसल का कोई अवशेष हुआ है तो वह बिल्कुल ख़त्म हो जाए और माटी जी की एकदम अच्छी तरह भुरभुरी हो जाए। यूँ बाद में दो तीन बारी कोई देसी हल छूँ या फिर कल्टीवेटर छूँ अपना जुताई करके और खेत ने एकदम बढ़िया अपना तैयार कर लिया। और एक विशेष बात को ध्यान रखा कि जठे ग्वार की बुआई करें वो खेत जी का है बिया, तो देखो किसान भाई अपने क्षेत्र की बात करा तो टिब्बा क्षेत्र में जहाँ किसान भाई बुआई करे है, पर जठे समतल खेत हुए एक सा खेत हुआ अरबिंग में आप ग्वार की बुआई करा तो खेत का माँ पानी की जी की निकासी है बा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले देखो बिरखा के दिनांग में बिरखा ज़्यादा हो जाए तो पानी की निकासी जी की बा बहुत ही जरूरी है। और ज़्यादा पानी छूके ग्वार की फसल जी की बा ख़राब हो सके है, बिंगो उत्पादन जी को कम हो सके है, तो इन करके इन बात को भी आपने ध्यान रखना चाहिए। बिंग बाद में किसान भाइयों आपा ग्वार की अच्छी पैदावार खातर खेत के माँ जिका भी आपने जरूरी जिका पोषक तत्व है, खाद है, उर्वरक है, भी अपन देना चाहिए। और अपन जब बिल्कुल छेकड़ वाली जुताई करा तो बी टाइम भी अच्छी आपने गोबर की सड़ेड़ी खाद हो है तो वह भी माटी में अपन मिला देनी चाहिए।

जी शू क्या कि माटी की जिकी उर्वरा शक्ति है बा ज़्यादा हो जाए और भी शू क्या पौधा की बढ़वार जिकी है बा अच्छी हो सी। और इस अलावा किसान भाइयों आपा अगर माटी की जांच नहीं करवाई है तो माटी की जांच भी आपा जरूर करवा लें तो भी शू अपना खेत में जिका पोषक तत्व है बंगी आपा ने जानकारी हो जाए तो भी शू आपा जिका संतुलित मात्रा में, संतुलित मात्रा को मतलब है कि जितना खेत में अपना जरूरी है और जिका जिका भांत का पोषक तत्व चाहिए बंगो बंगो आपा खेत में आपा काम में लेवा बे पोषक तत्व खेत में अपन देना चाहिए। और ग्वार की फसल की बात करें तो इनमें जी नत्रजन है, फॉस्फोरस है, इनकी आवश्यकता जिकी है मुख्य रूप से रिवे तो मिट्टी के परीक्षण के आधार पर अपन खाद और उर्वरक जिका खेत में अपन देना चाहिए। किसान भाइयों भी बाद में अपन बुआई करा तो बीज जिको अपन ने 100 बीज जिको है और बिंग जिकी उचित गहराई है बिंग ऊपर अपन बुआई करनी चाहिए। और भी बाद में अब आप देखा कि आपने जिका क्षेत्र के में कई किसान भाई जी का है वर्षा आधारित जिका खेत है आपने जैठे बिरखा शू आपा के एक ग्वार की बुआई करा तो पर्याप्त मात्रा में नमी हुआ तो बी टाइम आपने ग्वार जिको है वो बीज देना चाहिए जिसमें कि अंकुरण अच्छा हो जाए और रोगों से बचाव खातर बीज जिको है वो प्रमाणित और एकदम उन्नत किस्म का बीज है बिंग आपन चयन करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप देखा कि आप बीज जो है कठूं भी ले गए आप बुआई कर दें तो बाद में फिर बिंगमा की है भांत भांत की समस्या में आवे। कई बार आप देखा कि खेत में जो रोग है या कीट है बंगो प्रकोप ज़्यादा हो जाए और बीच में से आपन देखो सुनन ने भी मिलो हो कि नकली जो बीज है तो बीच में फिर क्या पैदावार कम हो जाए तो इन करके प्रमाणित बीज लेवा और एकदम उन्नत जी की किस्म है बंग भी बोई बीज जी को आप खेत में आप बुआई करा और जठे से भी बीज आप खरीदा तो बैठे से बीज को जो बिल हो वो आप जरूर ले लिया। और बुआई से पहला बीजोपचार आप जरूर कर लें जिसमें कि फसल का जिका शुरुआती रोग है या फिर जिका बीज जनित रोग है या कीट है भंगो प्रकोप खेत में अपने ना हो और बाँचों अपनी फसल बाड़ी जिके अच्छी रहे। और जी आगे बिरखा शुरू हो सी तो भी बाद में आप आएंगी बिरखा होने तीन जी उचित नमी हो तो भी बाद में अपन बुआई कर देनी चाहिए और इनकी कतारों कतार और पौधों की पौधों जिकी दूरी है वह एकदम उचित रखनी चाहिए जिसों के कि इंगमा जो पोषण है और हवा जी की है वह अच्छी तरह मिलते रहे जिसों के कि अपना उत्पादन जी को अच्छी होवे। तो सही खेत की तैयारी छूँ और सही आपा किस्मों को चुनाव करा, प्रमाणित बीज जी को अभी बुआई करा और सही तरीके से आपा पूरी खेती पाती का काम करा तो बीचों किसान भाइयों अपने जिका कृषि विज्ञान केंद्र में अपना जिका वैज्ञानिक है या जिका जानकार है वह बतावे है कि 20 पैसा उत्पादन जिको है ज़्यादा होवे और खर्चो बिंगमा कम आवे तो बीमा किसान भाइयों को लाभ जिको है ज़्यादा होवे। तो

किसान भाइयों सुनो भी आपा भजन। किसान भाइयों खेत में आपा ने हरी खाद जिकी है बिना भी ज़्यादा ज़्यादा अपन काम में लेनी चाहिए, क्योंकि हरी खाद से अपने खेत की जिकी पोषक तत्व है वह तो पूरा हो ही हुआ है। बिना सागे सागे खेत की जिकी बनतर है माटी जिकी है वह भी अच्छी हो जाए। और हरी खाद की बात करें तो देखो ढेंचे की जिकी खाद है नी वह बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो आज की खाद है आपने लगभग हरेक तरह खेत खातर अच्छी है। और इनको विशेष फायदा है कि आपने कई खेतों में आप देखा कि भूमि जिकी है लवणीय हुए या क्षारीय हुए तो बिंग में भी इनको अच्छो फायदो रहे और अच्छो सुधार इशू हो जाए। तो इन करके किसान भाइयों आज की फसल है इन खाद की दो प्रजातियां हुए, एक तो ससबेनिया एक्यूलेटा और दूसरी है ससबेनिया रोस्टेट्रा। तो आगे जिकी बुआई है आप अप्रैल और जो महीनों चल है मई के पूरे महीने में, तो आगे आने वाले 10 दिन में भी अपन जी कहेंगे बुआई आप कर सका हाँ। तो जिका भी किसान भाई ढेंचे की हरी खाद की बुआई करनी चाहे तो बिंगो अच्छो टेम है तो आप बुआई जी की अपन कर देनी चाहिए। और इन खातर बीज की किसान भाई आप बात करें तो 15-20 किलो बीज जी को है प्रति बीघा के हिसाब से अपन काम में लेना चाहिए। और ढेंचे की जिकी बड़वार है बा 40-60 दिनांक में लगभग 1.5 महीनों आप मान लें कि बिंग में 3-5 फुट तक हो जाए। और इंचू 20-25 टन जी को है प्रति हेक्टेयर। और बीघे की आप बात करें किसान भाइयों तो 5-6 टन प्रति हेक्टेयर प्रति बीघे के हिसाब से आप इनकी पैदावार मिले है। और इन्हें जी फूलों की जी अवस्था हो बीसू पहली या हल्का हल्का फूल आवे तो बी टाइम आप इन्हें माटी में मिला देनी चाहिए। और धान और अपने कणगो फसल चक्कर आप काम में लेवा तो बीसू फिर आपने जी फसल की उत्पादकता है तो बिंग में

बतावे है कि 35% तय जिकें गी बढ़ोतरी हो जाए। और इंग सागे सागे धान की फसल गए माँ हरी खाद लेने छूँ, इंगो जिको उपयोग है वो अच्छो मानो जाए। और लगभग सगली जगह पूरे भारत में अपना पूरे देश में ढेंचे की जिकी हरी खाद है काम में ली जावे। और इंग लाभ की बात करें किसान भाइयों तो इसमें देखो माटी की बनतर जिकी बात तो अच्छी हो भी हुआ है, और पानी इंगो जिके धारण करने की क्षमता है वह भी ज़्यादा हो जाए, तो बीच नमी जिके खेत में बा ज़्यादा टाइम तय रहे। और सागे सागे जिको नत्रजन हो बिंग पोषक तत्व वह जिका है वह भी पूरा हो जाए और बिंग वहाँ बढ़वार भी हुए। तो ये करके अपन जिके नत्रजन खेत में खाद देवा तो वह भी अपन कम देनी पड़े। इंगे सागे सागे जिका कार्बनिक पदार्थ है बंगी मात्रा में भी वृद्धि हो गए। और इसमें भूमि के ऊपर जिको ऊपर आप देखा कि कटाव हो जाए, कई बार कोई जोर आंधी आ जाए तो बीचों भी आप देखा कि भूमि को जिको कटाव होने लग जाए, तो बीचों भी राहत मिले तो ऊपर वाले जी की स्तर हुए वह भी इंगे जिकी अच्छी रहे। और सागे सागे जिका खरपतवार है बंगी भी रोकथाम हो जाए। और सागे सागे जी अभी आप बात करी कि क्षारीय और लवणीय भूमि है तो बिंग में तो सुधार हो ही हुआ है। इसमें जिका है भांत भांत का जिका कण पैदा होगी और आपने माटी जी की है भी ने एकदम अच्छी जी की आपने फसल गए एकदम काबिल बना दे, जिसमें फसल जी की आपने उत्पादन जी को अच्छा हो गए। इंगे सागे सागे किसान भाइयों जिका सूक्ष्म जीव है बंगी संख्या भी ज़्यादा हो जाए और इंगे जी की भौतिक दशा है वह तो अच्छी हुई हुआ है। और सागे इंग में जिको हवा को संचार हुआ है अपने खेत में वो भी ज़्यादा हो जाए। और इंग में अपन है दो चार बातें हैं जिके वो अपन जरूर ध्यान रखना चाहिए, सावचेती रखनी चाहिए। तो इंग में हरी खाद जिके 40 से 60 दिन में आप भूमि में जरूर मिला दें। और जब भी आप इन्हें खेत में आप बावा या मिलावा तो अपन नमी को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जिकी पर्याप्त नमी जरूर होनी चाहिए। और बालू रेत वाला खेत में अपन ने गहराई जिकी ज़्यादा होनी चाहिए, पर भारी माटी होवे तो बिंग में कम गहराई पर अपन इन्हें दबाना चाहिए। और इंगे सागे सागे हरी खाद वाली जिकी फसल हैं मैंने भूमि में मिलाने छूँ पहला फूल आने छूँ पहली की जिकी अवस्था है भाई अच्छी मानी गई है, तो इंगो आप जरूर ध्यान रखा कि फूल आने से पहली आप इन्हें भूमि में दबा दें जिसू कि इंगो असर जो है पूरा रेवे। और सागे सागे ढेंचे की जिकी हरी खाद है आज की फसल है लगभग सगड़ा भात का ही मौसम या जलवायु जिकी है बिंग में आप इंग बुआई करके और इन्हें आप खेत में काम में ले सका हाँ। तो इन करके हरी खाद छूँ किसान भाइयों आप देखो बाकी का भी आप खाद उर खेत में देवा हाँ, तो बिंग सागे सागे जी गोबर की खाद है जैविक खाद है वह भी अपन काम में लेनी ज़्यादा चाहिए। और सागे सागे हरी खाद जी की है आ भी अपन काम में लेनी चाहिए, क्योंकि कई किसान भाई जी का है खेत खाली रखे जी हाँ, तो महीने डेढ़ महीने का माँ डेढ़ उन दो महीना का माँ आज की फसल है इंगे आप बुआई करके और इन्हें आप खेत में मिला सका जिसू के अपना कई भांत का पोषक तत्व और भूमि की बनतर जी की है वह अच्छी हो जाए। किसान भाई करा और बातचीत पहली सुना एक भजन लियो सुनो सा।

किसान भाइयों, सुनो आपां गीत, पण अब तो कार्यक्रम को टेम हो गयो है। तो आज को कार्यक्रम इतो ही, मन्ने दियो थे आज्ञा। राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM एंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए फिल्मी भक्ति गीत सुनिए।

अभी आपने लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को सुना। गीत के बोल जावेद अख्तर के तेज संगीत AR रहमान का था। फिल्म का नाम लगान। आइए भक्ति गीतों की श्रृंखला में अगला गीत हम आपको सुनवाएं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में, जूली फिल्म से। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत राजेश रोशन का।

आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुने मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, सीमा फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्म भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनिए। हमारी आज की फिल्म जो 1964 में बनी, इसका निर्देशन शंकर ने किया, फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही। इस फिल्म में फिल्म का मुख्य नायक, जिसके बारे में हम आपको बाद में भी बताएंगे, अपने मित्र के साथ विदेश से भारत लौटता है और लौटते समय जो गीत इस फिल्म का प्रदर्शित होता है, वही गीत हम आपको सुनवाते हैं।

निकले ठाठ से निकले धूम से निकले ठाठ से निकले धूम से निकले। उनको भी है हमारा इंतजार।

0: राजकुमार। होय होय आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार।
1: साथियों, इस गीत को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमारी आज की फिल्म है एक यादगार फिल्म राजकुमार। ये एक ऐसी फिल्म जिसमें आप शाही अंदाज देखेंगे, रोमांस की मिठास देखेंगे, साजिशों का रोमांच देखेंगे और दिल छू लेने वाला संगीत भी आपको इस फिल्म में मिलेगा। साथियों, ये फिल्म जो 1964 में रिलीज हुई, इस फिल्म का निर्देशन के शंकर ने किया। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में शमी कपूर, साधना और प्राण थे। इन कलाकारों ने अपनी शानदार अदायगी से इस फिल्म को अमर बना दिया। ये फिल्म शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जो सच्चाई, प्रेम और न्याय के रास्ते पर चलता है, लेकिन रास्ते में उसे अनेक प्रकार के धोखे, षड्यंत्र और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जब शाही राजकुमार महल में प्रवेश करता है, जहाँ राजकुमार अपने महल और राजसी जीवन के बीच लोगों की सच्चाई जानना चाहता है, तो एक दिन उसकी मुलाकात एक सुंदर और सरल युवती से होती है। और पहली मुलाकात, पहली मुस्कान और दिल से शुरू हुई प्यार की हल्की सी दस्तक इस फिल्म में दिखाई देती है। और एक मधुर गीत इस फिल्म का हम आपको सुनवाएं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत सुना। संगीतबद्ध किया था इसे शंकर जयकिशन ने और फिल्म हमारी आज की राजकुमार। कहानी की यदि हम बात करें तो राजकुमार यानी भानु प्रताप, जिसमें शमी कपूर ने यह भूमिका निभाई, अपने दोस्त कपिल के साथ यानी राजेंद्र नाथ के साथ जब विदेश से एक दशक के बाद अपने देश लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता महाराज ने भानु प्रताप की मां के निधन के बाद

उनका नई पत्नी महारानी से एक बेटा है। रानी के भाई नरपत सिंह यानी प्राण ने सिंहासन को कब्जाने की योजना बनाई है और उसने अपनी बहन महारानी को उसके बेटे को वारिस के रूप में स्थापित करने का वादा करके साजिश में शामिल किया है। राजकुमार भानु को इस सारी योजना की इत्तला दे दी जाती है और इसलिए वो योजना बनाने वालों को बाहर निकालने के लिए बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात साधना से होती है और धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ने लगता है।

अभी आपने हमारी आज की फिल्म राजकुमार का ये गीत सुना, सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल हज़रत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए इसी फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवाएं, उसके बाद में हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इस फिल्म के आखिर में शमी कपूर सभी समस्याओं का हल कर देता है और एक मधुर मिलन के साथ फिल्म की समाप्ति होती है। बहरहाल, इस फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवाएं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद जीत के बावजूद क्वालिफायर से चूकी। सुपर शतरंज क्लासिक में आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगला मुकाबला अनीस गिरी से। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ जारी और जिनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुछ खिलाड़ियों ने रजत तो कुछ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोक से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह उज्बेकिस्तान के एजान खलमा खानोव से 9-0 से हार गए। 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कुमार सचिन ने पदक अपने नाम किया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आइए सुनते हैं मैच का हाल।
1: प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग में आज सूरज वशिष्ठ उप विजेता रहे। फाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में सूरज ने किर्गिस्तान के नूरिस्तान सुई और गुलोव को 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सागर सिंह ने सऊदी अरब के मुंथिर अब्दुल्लाई जंदू को 4-0 से शिकस्त दी थी। प्रतियोगिता में नेहा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ चैंपियनशिप में रही हैं। उन्होंने पहले अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। दूसरी ओर काजल ने तेजी से खुद को भारत की सबसे होनहार कुश्ती प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। वे मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन, अंडर 17 विश्व चैंपियन और अंडर 20 एशियाई चैंपियन के तौर पर दानांग पहुंची हैं। प्रो रेसलिंग लीग के कई पहलवान भारतीय दल का हिस्सा हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि ये लीग भारत की अगली पीढ़ी की कुश्ती प्रतिभाओं को निखारने, विकसित करने और उनकी प्रगति के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रही है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को मंच भी प्रदान करती है, जिसके जरिए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। इन प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय रेसलिंग के विकास में अहम योगदान देना होता है, जिससे वे उभरती हुई प्रतिभाओं को सपोर्ट कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। चैंपियनशिप से सीधे चलते लखनऊ की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला जारी है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 22 गेंद पर 56, तो वहीं हेड ने 16 गेंद में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 48 गेंदों में 113 रन

0: इस जबरदस्त साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 79 रन, जबकि क्लासिन ने 24 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने 29 रन जोड़े। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 2 तो वहीं सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट चटकाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान मलिंगा को 2, साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को 1-1 सफलता हाथ लगी। ईशान किशन को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये ईशान किशन का आरसीबी के खिलाफ लगातार 4th अर्धशतक था। मैच के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के साथ खेलने का अपना अनुभव साझा किया।
1: I don't know, to be very honest, like I said, I just take one match at a time, but I don't know why. But I do feel confident when I'm playing against them, and I think end of the day, fortune favors the brave, and I just try to do my thing, and it works on my way.
0: इस जीत के बावजूद हैदराबाद क्वालिफायर में जगह नहीं बना सकी, वहीं बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी शीर्ष स्थान पर रही। 26 मई को क्वालिफायर 1 में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, वहीं 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद 4th स्थान पर पहुंचने वाली टीम से खेलेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: जी जरूर, कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की, लेकिन वे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाने से पीछे रह गए। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 1 में अपनी जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं विशेष, हमारे सहयोगी। विशेष, कल अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टॉप 2 की जगहें फिक्स हो गई, लेकिन 4th स्थान के लिए अब भी जद्दोजहद बाकी है। कौन से ऐसी टीम है जो आपको नजर आ रही है कि 4th स्लॉट के लिए अपना स्थान पुख्ता करती नजर आ रही है?
3: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि 3 टीमें अपनी जगह पहले ही प्लेऑफ के लिए पक्की कर चुकी हैं, और तीनों लगभग जो है बराबर दर्जे की टीमें हैं, और 18-18 अंकों के साथ इन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बनाई है। सिर्फ नेट रन रेट के चलते इन टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हम 4th स्थान की, तो जिसके लिए राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली अभी रेस में बनी हुई हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो वह अपना मुकाबला पहले तो जीतें, उसके बाद उन्हें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब तीनों के मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो वो अपना मुकाबला जीतें, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के मुकाबले हारने की कामना करें। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे पहले अपना मुकाबला जीतें, और राजस्थान अपना मुकाबला यदि हारती है तो पंजाब को प्लेऑफ्स में जगह मिलेगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे सुनहरा मौका उन्हीं के पास है कि बस वो, उन्हें अपना मुकाबला जीतना है और उनके लिए प्लेऑफ्स में स्थान पक्का हो जाएगा।
2: तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स के का फॉर्च्यून जो है अपने हाथों में है, और वो अपने मुकाबला जीत करके सीधे टॉप 4 में जगह बना लेंगे। अब सीधे रुख करते हैं शतरंज की ओर। सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के 8वें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगली बाजी में प्रज्ञानंदा का मुकाबला अनीस गिरी से होगा। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में अब तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में।
4: प्रतियोगिता के मुकाबले में आज आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए। दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फेबियानो कारुआना और जर्मनी के विसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही, जबकि विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डीएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के नाम वापस लेने के बाद अमेरिका के वेस्ली सो को वॉक ओवर मिला। अब प्रतियोगिता में आखिरी दौर का खेल बाकी है, जहां 5 खिलाड़ी खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगे। अभी कीमर और कारुआना दोनों 5-5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। सिंदारो, वेस्ली और फॉरेस्ट 4.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे, जबकि प्रज्ञानंदा, गिरी और वाचियर लाग्रेव 4-4 अंक लेकर संयुक्त 6 स्थान पे हैं। डीएक बोगदान डेनियल ने अपना अभियान 3.5 अंकों के साथ समाप्त किया। अंतिम दौर में उन्हें वॉक ओवर मिलेगा, जिससे उनका स्कोर 4.5 हो जाएगा। सिंदारोव पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लाग्रेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में गिरी का सामना करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।

0: आर प्रज्ञानंदन ने लगातार शार्प माइंड और दमदार खेल प्रदर्शन के दम पर पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई और अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कैंडिडेट्स में उनका प्रदर्शन मिला जो रहा, तो ऐसे में ये प्रतियोगिता उनके लिए बेहद अहम है। कर लेते हैं अब एथलेटिक्स पे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। आइए चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता महवीश के पास। महवीश हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं। तो महवीश, रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता चल रही है। पहले दिन तो खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए, लेकिन आज दूसरे दिन के मुकाबले में कौन कौन से बड़े उलटफेर या रिकॉर्ड देखने को मिले?
1: जी हाँ, इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। जैसा कि आपने बताया कि आज खेले हुए फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गुरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। आज पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है। वही महिलाओं के शॉर्ट पुट स्पर्धा का खिताब रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज
0: महवीश, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन प्रतियोगिता पर क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
1: बिल्कुल, रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है। देश भर के करीब 700 एथलीट इस कड़कती धूप में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आयोजकों ने खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान पर ORS, मेडिकल टीम और पर्याप्त पानी की विशेष व्यवस्था कर रखी है।
0: महवीश, ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए बेहद अहम है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए आगे चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है?
1: जी बिल्कुल, ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होना है। जो भी खिलाड़ी यहाँ तय किए गए क्वालिफिकेशन मार्क को छू रहे हैं उन्हें सीधे भारतीय टीम का टिकट मिल रहा है, तो अगले दो दिनों में कई और रोमांचक फाइनल मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवीश, आपने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया जिनसे पूरे देश को उम्मीदें रहती हैं, और जैसे जैसे प्रतियोगिता अंतिम रूप लेगा हम और भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे। बात करते हैं स्क्वैश पर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लड़कों के वर्ग में शिवेन अग्रवाल, वहीं लड़कियों में अनिका दुबे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सीधे चर्चा कर लेते बात कर लेते जिनेवा ओपन टेनिस पर। जिनेवा ओपन 2026 टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे। न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ खेलते हुए फाइनल मुकाबले में रोमेन अर्नियार्डो और मार्क पॉलमेंस से 6-3, 6-7, 7-10 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जरूर वे उप विजेता रहे, लेकिन कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें यूकी भांबरी ने और जिसको अपने नाम किया है। 18वीं वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 2025 में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे US ओपन जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेल चुके हैं। रुख कर लेते गोल्फ की ओर। बेल्जियम में भारतीय गोल्फर युवराज संधु ने रिंकवेन इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में चल रहे सोडाल ओपन में कट हासिल किया, लेकिन शुभंकर शर्मा चूक गए। दक्षिण अफ्रीका के जेंडर लोम्बार्ड और फ्रांस के टॉम वेलियन दूसरे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बना चुके हैं। और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला जारी है। लखनऊ ने 4 विकेट पर 14 ओवर में 134 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप

0: अपनी राय और सुझाव हमें sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक

0: रचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को

0: month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China, and Indian grappler Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत में गुलाम अली की गाई गजलें सुनिए।

जनरल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत में गुलाम अली की गाई गज़लें सुनिए।

अभी आप सुगम संगीत में गुलाम अली की गई गज़लें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, एल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो

0: समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए, समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं लिखे, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दे। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर।
6: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई, और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
3: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
7: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
3: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
8: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
9: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था? अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है, तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये

0: जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर, कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़, केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा, महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साथी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
4: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी

0: स्ट्रीमिंग पे सुनने हो या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय,
3: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहां से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाश

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमरीका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, popularly known as Changanasheri Madhavan Nambudiri. He is an A-grade vocal artist of Akashwani and a highly respected performer with over two decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Shri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankara Narayanan, and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Shri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Shri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश

0: ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the